मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता जैविक खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज के दौर में अधिक उत्पादन लेने के लिए हम कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक, कीटनाशियों,

0: फफूंद नाशियों, खरपतवार नाशियों या अन्य कृषि रसायनों के प्रयोग से हमारे पर्यावरण को, हमारे जल को काफ़ी क्षति हो रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जल भी हमारा प्रदूषित हो रहा है और अंततः हम बीमार हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल का खर्च जो है वो हमारा बढ़ जा रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम जैविक खेती करें। जैविक खेती की आवश्यकता आज इसलिए ज़्यादा पड़ रही है कि हमारा अनाज ही दूषित हो जा रहा है, हमारी सब्जियां जो हैं वो दूषित हो जा रही हैं कृषि रसायनों के प्रयोग से, और उनमें पोषक तत्वों की कमी भी पाई जा रही है, खास करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो उसके सेवन से हम खुद बीमार पड़ जा रहे हैं और बीमार पड़ने से हमारा खर्च भी बढ़ जा रहा है। तो हमें शुद्ध अनाज मिले, शुद्ध सब्जियां मिले, शुद्ध दूध मिले, इसके लिए आवश्यक है कि जैविक खेती को हम बढ़ावा दें, जैविक खेती करें। जैविक खेती में आवश्यक ये बात है कि हम मिट्टी से लेकर के पौधे तक जो भी कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं उस कृषि रसायनों के प्रयोग में कमी लावें और अंत में कृषि रसायनों के प्रयोग को पूर्णतः समाप्त कर दें। तो इसके लिए जब हम खेत की तैयारी से बात शुरू करें तो रासायनिक उर्वरकों की जगह पर यदि हम गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम कृषि रसायनों के प्रयोग से बच जाते हैं, उर्वरकों के प्रयोग से बच जाते हैं। उससे भी अलग जो है वो आप बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, केंचुआ की खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं, फिर सिटी कंपोस्ट जो कि शहरों के जो कचरे होते हैं उनसे तैयार किया हुआ कंपोस्ट जो है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद तथा उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिट्टी में जिनकी कमी देखी जा रही है उनकी भी आपूर्ति हो जाती है। फिर जब कीटनाशियों के प्रयोग की बात आती है, क्योंकि कीटनाशी सबसे ज़्यादा आपके जहरीले होते हैं और सब्जियों की फसल में खास करके जब कीटनाशियों का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है खाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान होता है जो सब्जियों का सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत सी सब्जियों का सेवन हम सलाद के रूप में भी करते हैं, कच्चा भी खाते हैं और उस समय उसकी विषाक्तता जब होती है तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो सब्जियों की फसल में हम बर्मी कंपोस्ट या गार्डन में भी हम बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए जो प्राकृतिक विधि है, जो अन्य विधियां हैं, उस तरह से कीटनाशियों के प्रयोग को कम करके कीड़ों पर आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे आपके खेत में कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो हाथ से चुन करके भी उन्हें आप नष्ट कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पर डंडे गाड़ दें और डंडे पर चिड़ियों के बैठने की व्यवस्था यदि कर दें तो खेत में यदि चिड़िया आएंगी, पक्षी यदि खेत में आप आमंत्रित करते हैं तो वे स्वतः जो है कीड़ों को चुन करके खा जाते हैं, और इससे जो है बिना कीटनाशियों के प्रयोग के, बिना पैसे के आपका कीट नियंत्रण हो जाता है। उसी तरह से खरपतवार नाशी के लिए तो निकाई गुड़ाई आप करें, या जब रोग होते हैं तो रोग जनकों के नियंत्रण के लिए या रोग जनकों के रोकथाम के लिए भी आप प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। गौमूत्र से बने हुए कीटनाशी पदार्थ, गोबर से बने हुए कीटनाशी पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैविक खेती में धीरे धीरे कृषि रसायनों के प्रयोग को कम करके आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं और फसल उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं।
1: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता जैविक खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की

0: समीक्षा की ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर M नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
3: सिकंदर और पौरस

0: में युद्ध चल रहा था। सिकंदर को सूचना मिली कि शत्रु देश का एक साधु अपनी जड़ी बूटियों से उसके घायल सैनिकों का उपचार कर रहा है। सिकंदर उस साधु के पास आया और पूछा कि तुम शत्रुओं की सेवा क्यों कर रहे हो। साधु ने मरी हुई एक चींटी उठाई और पूछा, क्या तुम इसे जीवित कर सकते हो? जब सिकंदर ने इसका उत्तर नहीं में दिया तो साधु ने कहा, जब तुम इसके प्राण दे नहीं सकते तो मनुष्यों के प्राण लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? हर कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। बबूल के पेड़ बोने पर आम की लालसा निराधार है। सदकर्तव्य और कुछ नहीं बल्कि मानव धर्म का पालन करना है। और सरल शब्दों में कहें तो दूसरों के अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच का संतुलन ही तो धर्म है। हमारे व्यवहार में दया, परोपकार, सहिष्णुता और सहयोग की भावना हो और उसके अनुरूप काम करते हो तो सबसे बड़ा धर्म यही है। ऐसा माना जाता है कि किसी एक सदकर्तव्य को अगर अपना लिया जाए तो बाकी सारे गुण अपने आप चले आते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उस सत्कर्म से है जिससे एक बड़े समुदाय का लाभ होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन का 3/4 हिस्सा गलत कार्यों में खर्च कर दिया तो भी शेष बचे समय में सत्कर्म या जनहित का कार्य करके पश्चाताप कर सकता है। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिलता है, इसलिए ऐसे जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जीवन में जितने सदकर्तव्य किए जाएं उतना ही अच्छा। इस संदर्भ में सवाल उठता है कि कर्म का चयन कैसे किया जाए, कि किस व्यक्ति को क्या कर्म करने हैं। इसका उत्तर है, निष्काम भाव से कर्म करना ही सदकर्तव्य है। अगर हम सदकर्तव्य करेंगे तो इससे न केवल हमारा अपना व्यक्तित्व बेहतर होगा बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सुधरेगा। वास्तव में सद्वृत्ति एक ऐसी पूंजी है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि विपत्ति में सदकर्तव्य ही काम आते हैं। मानव जीवन का यह गुण सबसे महान गुण है। अमीर हो या गरीब, सभी के पास व्यक्तित्व के गुणों की प्रकृति प्रदत्त ये संपत्ति तो होती ही है। आवश्यकता मात्र इतनी ही है कि जीवन के दुखपूर्ण और कष्ट साध्य समय में भी ऐसे गुणों को दृढ़ता के साथ अपनाए रखें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौड़वाल के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये एक और भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता, अपेंडिक्स फटना, कारण एवं उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर राजीव सिन्हा, भेंट करता है सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिन्हा जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे आज हम बातें करेंगे अपेंडिक्स फटने के कारण एवं उपचार पर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार श्रोता।
1: डॉक्टर साहब, हम प्रायः सुनते हैं कि लोगों का अपेंडिक्स फट गया और इससे काफ़ी परेशानियां भी लोगों को उठानी पड़ती हैं, तो ये अपेंडिक्स कैसे फटता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं?
2: अपेंडिक्स एक शरीर का एक अंग है जो आजकल मनुष्य में इस्तेमाल नहीं होता। ये जब मनुष्य घास फूस खाता था उस समय ये पाचन क्रिया में महत्व था इसका, लेकिन अभी इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये बड़े यहाँ सीकम के पास एक जंतंग के रूप में एक उंगली के साइज में रहता है
1: जी।
2: तो इसमें एक छोटा सा ल्यूमेन रहता है, उसमें कभी कभी फिकोलिथ या पखाने का कोई कड़ा टुकड़ा या कभी सूजन हो जाता है या म्यूकस अटक जाता है जिससे सूजन हो जाती है, जिसे हम लोग आमतौर पर अपेंडिसाइटिस कहते हैं
1: जी।
2: तो अपेंडिसाइटिस मतलब कि उसमें सूजन हो गया, उसमें लाली आ गई, दर्द हो गया, बुखार, इसका प्रेजेंटेशन होता है कि जैसे पेट में दर्द हुआ, पहले नाभि के चारों तरफ, बाद में वो शिफ्ट कर जाता है पेट के नीचे दाहिने तरफ जहाँ अपेंडिक्स एक्चुअली रहता
1: जी।
2: तो उसका यदि उचित समय पर इलाज नहीं होता है, उचित समय डॉक्टर के नहीं जा पाता है, आदमी प्राय पेट कर रहा है, गैस्ट्रिक है करके उसे नहीं समझ पाते हैं, तो वो धीरे धीरे पक जाता है, उसमें गैंग्रीन बन जाता है, रक्त संचार उसमें कम जाता है, वो काला पड़ तब फिर उसके जो वो कहीं से लीक कर जाता है, प्राय टिप से या अपने जंक्शन से वहाँ से, तो उससे जो भी सिक्रीशंस रहता है या इन्फेक्टेड मटेरियल वो पूरे पेट के कैविटी में फैल जाता है जो कि पेरिटोनाइटिस कहलाता है। तो अपेंडिक्स फटना एक्चुअली लेट स्टेज अपेंडिसाइटिस का परिणाम है
1: जी,
2: जो कि खतरनाक है, खास करके बच्चों में और बूढ़ों में जिनमें लोगों से लड़ने की क्षमता कम रहती है।
1: तो ये जब अपेंडिक्स फटता है तो उसका स्राव जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों पर भी पड़ता होगा, तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं?
2: अपेंडिक्स जब फटता है तो जो इन्फेक्टेड मटेरियल पेट में चारों तरफ जाता है उसके झिल्ली में, तो उससे इन्फेक्शन चारों तरफ फैलता है, बुखार आना, शरीर का पानी कम जाना, काफ़ी गंभीर रूप से मरीज बीमार हो जाता है, तो उसमें काफ़ी हायर एंटीबायोटिक, फिर उसको वॉल्यूम मैंने दे के आईवी फ्लूइड दे के पेशेंट को तैयार किया जाता है। इसका एकमात्र ट्रीटमेंट सर्जरी है, इसलिए जल्द से जल्द सर्जन के यहाँ इसमें जाना चाहिए। जब कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स नहीं है, साधारण रूप में सूजन है, तो वो तो दवा से ठीक हो जाता है
1: जी,
2: लेकिन जब ये लेट हो गया तो इसमें सर्जन के शरण में जाना ही चाहिए आदमी को।
1: क्या ये रोग जानलेवा भी हो सकता है?
2: बिल्कुल जानलेवा, खासकर एक्सट्रीम्स ऑफ एज मैंने जैसे बच्चों में और बूढ़ों में ये जानलेवा भी हो सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, अब कारणों के बाद अगर हम उपचार की बातें करें तो इस अपेंडिक्स फटने के बाद हम कैसे अपने रोगी को ठीक कर सकते हैं?
2: इसमें तो तुरंत मैंने उचित जगह पर पेशेंट को ले जाना है, वहाँ डॉक्टर उसे हायर एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड, शरीर को इस रूप में तैयार किया जाता है कि वो ऑपरेशन को टॉलरेट कर पाए, उसका उसका ऑपरेशन होता है प्रायः ठीक रहता है, केवल 1% में ही कुछ खतरे की बात रहती है, प्रायः ठीक हो जाता है सही समय पर इलाज से,
1: यानी कि शल्य चिकित्सा ही इसका एकमात्र उपाय है
2: अपेंडिक्स फटने का
1: जी। उसके बाद डॉक्टर साहब, जब ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद फिर कौन कौन सी सावधानियां रोगी को बरतनी चाहिए जो कि वो आगे भी वो स्वस्थ रह सके?
2: ऑपरेशन यदि सफल हो गया, ऑपरेशन से रिकवरी यदि हो गई
1: जी,
2: तो अपेंडिक्स का मामला तो उसी समय खत्म हो गया
1: जी।
2: वो बदकिस्मती से किसी को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रायः यह बहुत सफल ऑपरेशन रहता है
1: जी,
2: इसमें कोई डरने की बात आगे के लिए नहीं रहती
1: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपेंडिक्स फटने के कारण एवं उपचार पर बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना भेंट वार्ता, अपेंडिक्स फटना कारण एवं उपचार। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर राजीव सिन्हा, भेंट करता थे सचिन कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उससे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, संस्कृत वार्ता एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। गायक कलाकार होंगे रणवीर प्रसाद सिंह। फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आप सुनेंगे 10 बजे से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे बासुकी प्रसाद यादव। 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार होंगे नवल किशोर पासवान। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 3 बजे से आप सुनेंगे बांग्ला गान। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम का प्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:30 पर। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6 बजे से। 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे विवेकानंद ठाकुर। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे डॉक्टर अजय राय। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद शरशार अहमद। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। कलाकार होंगे श्री एल के पंडित। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहाँ पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपको दो पड़ाव में जानकारियों को देते हैं, और रसरंग में आपको सुनवाएंगे। आज हम कार्यक्रम के पहले पड़ाव में हमारा कार्यक्रम होगा रसरंग, जिसमें आप सुनेंगे आज गायक कलाकार निशा कुमारी को। साथ ही साथ आज के दिन 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे संस्कृत वार्ता, और कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे बहुत सी जानकारियों को। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं गायक कलाकार निशा कुमारी के द्वारा गाया यह भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं रसरंग में गायक कलाकार निशा कुमारी को। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 8 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व हवा चलने की भी संभावना है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए रसरंग में सुनते हैं गायक कलाकार निशा कुमारी के द्वारा गाया यह भजन। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रसरंग में गायक कलाकार निशा कुमारी को। अब आइए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत वार्ता में भेंट वार्ता, वैदिक संग्रहालयस्य परिकल्पना। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सत्यवान कुमार, भेंट करता हैं कुसुमाकर दुबे।
3: बिना अपूर्ण विधातु कृतिस्त्वां बिना अपूर्ण विधातु कृतिस्त्वां बिना अपूर्ण समा संस्कृतिस्त्वां बिना अपूर्ण विधातु कृतिस्त्वां बिना त्वमेवाशिशोभा श्यजगतः प्रिये त्वमेवासि शोभा श्यजगतः प्रिये हतश्रीरियं संस्कृतिस्त्वां बिना हतश्रीरियं संस्कृतिस्त्वां बिना अपूर्णा समा संस्कृतिस्त्वां बिना अपूर्ण

त्वदीयाधरस्यापि रागं विना त्वदीयाधरस्यापि रागं विना अपूर्णा समा संसृतिस्त्वां विना अपूर्णा।

विधातुः कृतिस्त्वां विना सचन्द्रापि हीयं निशाशारदे सचन्द्रापि हीयं निशाशारदे नराराजिते ते मुखाभां विना नराराजिते ते मुखाभां विना अपूर्णा समा संसृतिस्त्वां विना अपूर्णा विधातुः कृतिस्त्वां

मालम्बते सगायेत सुमिष्टं कथं त्वां विना सगायेत सुमिष्टं कथं त्वां विना अपूर्णा समा संसृतिस्त्वां विना अपूर्ण

अभाम किमिह दृश्यताम बिना ते स्मिताभाम किमिह दृश्यताम प्रगाढ़ं ततो वक्षसालिंग्यताम स्वहस्तेन हस्तो ममालंब्यताम इयं संस्रिति सत्यमिथ्यामयी इयं संस्रिति सत्यमिथ्यामयी इयं संस्रिति सत्यमिथ्यामयी किमत्रास्तु हेयं किमादीयताम किमत्रास्ति हेयं किमादीयताम प्रगाढ़ं ततो वक्षसालिंग्यताम स्वहस्तेन हस्तो ममालंब्यताम इदं जीवनं हन्त कटुकौषधम् इदं जीवनं हन्त कटुकौषधम् बिना स्नेह सुधया कथं पीयताम् समस्या समस्या पदं प्रतिपदं समस्या समस्या पदं प्रतिपदं समस्या समस्या पदं प्रतिपदं बिना प्रेरणं किं समाधीयतां बिना प्रेरणं किं समाधीयतां प्रगाढ़ं ततो वक्षसालिंग्यताम स्वहस्तेन हस्तो ममालंब्यताम त्वमेवाशि मे जीविताशा सखे त्वमेवासि मे जीविताशा सखे त्वमेवासि मे जीविताशा सखे

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता में भेंटवार्ता, वैदिक संग्रहालयस्य परिकल्पना। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर सत्यवान कुमार, भेंटकर्ता थे कुसुमाकर दुबे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए, कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अब हम यहां पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। और अन्य शेष जानकारियों में सबसे पहले जानकारी है आज के दिन के इतिहास के बारे में, यानी कि आज की तारीख है 8 जून, और 8 जून को क्या कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं हमारे इतिहास में, इसके बारे में जानते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि साल 1658 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था और अपने पिता शाहजहां को वहीं नज़रबंद यानी कैद कर दिया था। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। साल 1948 में आज के दिन भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की थी। साल 1949 ईस्वी में आज के दिन श्याम का नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया था। साल 1992 में ब्राज़ील में पहली बार आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस मनाया गया था, जिसकी शुरुआत 1992 के रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में हुई थी। जी हां श्रोताओं, आज के दिन विशेष की बात करें तो आज है विश्व महासागर दिवस, जो कि महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों यानी कि खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी की संतुलन आदि की ओर राजनीतिक और सामाजिक ध्यान को आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा साल 2009 में की गई थी। और श्रोताओं, आज के दिवस विशेष में हम एक दिवस और मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। आपको बता दें, जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा ब्रेन ट्यूमर के रोगियों की समस्याओं की ओर और ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए साल 2000 ईस्वी में यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस संगठन में कुल 15 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस दिवस को आयोजन का निर्णय लिया था। तो श्रोताओं, ये थी 8 जून के इतिहास में घटित कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जिद से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं रेल सूचना के बारे में। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका कि सही समय है सुबह आगमन का 8:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है सुबह आगमन का 9:00 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12253 यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस, जो कि साप्ताहिक गाड़ी है और यह सोमवार के दिन भागलपुर जंक्शन पहुंचती है, जिसका सही समय है पहुंचने का सुबह 9:20 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 5 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है सुबह आगमन माफ कीजिएगा इस गाड़ी का सही समय है भागलपुर से रवाना होने का सुबह 11:55 और यह गाड़ी आज अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राज 3 से। इस गीत को आवाज़ दिया है श्रेया घोषाल।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं विक्रमशिला सेतु के हाल के बारे में, यानी कि समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में जानते हैं, जिसमें कि पहली सुर्खी है कि कोसी सीमांचल की लाइफलाइन बहाल, सेतु पर छोटे वाहन चलने लगे। कोसी सीमांचल को जोड़ने वाली विक्रमशिला सेतु पर 34 दिन के बाद एक बार फिर से रविवार को दिन के 11:15 पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार प्रत्येक दिन दोपहर में 1 घंटा का ब्लॉक लेकर बेली ब्रिज का मेंटेनेंस का काम होगा। इसके लिए BRO की एक टीम पुल पर कैंप करेगी। यह टीम चारों बेली ब्रिज का बारीकी से जांच करेगी। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो नीट यूजी री एग्जाम की सिटी इंटीमेंस स्लिप जारी। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने रविवार को नीट यूजी 2026 की री एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा 21 जून को होनी है। अभ्यर्थी अब नीट यूजी 2026 के लिए आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। री एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। यह परीक्षा 551 शहरों में होने वाली है। और श्रोताओं, अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 608 परीक्षार्थी अनुपस्थित। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 7166 परीक्षार्थियों ने परीक्षा माफ कीजिएगा 7166 परीक्षार्थियों में से 608 अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 10:30 पर शुरू हुई। सभी 13 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। महिलाओं के लिए बने SM कॉलेज में एक पुरुष परीक्षार्थी का सेंटर भी दे दिया गया था। नोडल अधिकारी डॉक्टर मुसीफक आलम ने नोडल विश्वविद्यालय से बात कर उसे परीक्षा देने की अनुमति दिलाई। और वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि बाढ़ सुरक्षा सप्ताह संपन्न, आपदा प्रबंधन की जानकारी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा भागलपुर द्वारा आयोजित 7 दिवसीय बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का शनिवार को समापन हो गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोसाइटी के सचिव, जिला प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त और आजीवन सदस्य डॉक्टर विपिन पंडित ने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित निर्णय, प्राथमिक उपचार की जानकारी और सतर्कता से जान माल की क्षति को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म फैशन से। इस गीत को आवाज़ दिया है श्रुति पाठक ने।

श्रोताओं, अब वक्त हमें और इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम में आपके साथ और आगे बढ़ पाएं, क्योंकि अब 7:55 हो चुके हैं और अब जाते जाते यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहें। मैं केशव लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
5: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित

0: देशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्विन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ का पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय

0: किए गए जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
4: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Rehabilitated in this program, water management, treatment of riverbanks, determination of this flow, rural cleanliness, irrigation, distribution and public participation are included. Because of these measures, Ganga River has become more cleaner and the flow of river has also increased.
1: The Green India Mission, launched in 2015, is a flagship initiative dedicated to forest and ecosystem restoration. India's forest and tree cover stands at 8.27 lakh square kilometers, accounting for over 25% of the country's geographical area. India has achieved a significant milestone in global forest statistics by advancing to the 9th position worldwide in terms of total forest area. Talking to Akashvani News, Ashok Bhardwaj of Haryana said that he participated in Bhiwani district in plantation drive under this campaign.
2: Prime Minister Narendra Modi launched Ek Ped Maa Ke Naam campaign on World Environment Day on 5th of June in 2024. Under this campaign, he urged people to plant more trees. We also participated in this campaign and planted trees on the Haryana-Rajasthan border. We also appealed to people to plant trees with us.
1: As climate change, resource pressures and environmental degradation intensify globally, India has adopted a balanced approach that combines conservation, sustainability and development. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: The Ministry of External Affairs, MEA, has said Indonesia is a key pillar of India's Act East policy, as Indonesian Foreign Minister Sugiono held talks with External Affairs Minister S. Jaishankar in New Delhi. Rooted in deep civilizational linkages, the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership continues to grow from strength to strength across established and new areas of cooperation, MEA said. The two ministers also co-chaired the 8th India-Indonesia Joint Commission meeting yesterday. According to the MEA, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations under the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. Iran launched waves of missiles at Israel last night, marking its first such attack since the 8th of April ceasefire, according to Israel Defense Forces. Iran's state broadcaster also confirmed the missile attacks. Our West Asia correspondent has filed this report.
4: Iran framed the operation as a calibrated act of deterrence. The Qadim al-Anbiya Central Headquarters, the command center of Iran's armed forces, had warned that any strike on the Lebanese capital would cross a red line. By targeting a specific military installation rather than population centers, Iranian military leadership signaled it wanted to impose a cost on Israel without collapsing the ongoing negotiations towards a lasting regional peace agreement. The strikes also carried a broader message towards Washington. Iranian officials, including the parliament speaker, had expressed deep frustration over the U.S. ongoing naval blockade restricting the maritime transit through the Strait of Hormuz, and alleged that Washington effectively authorized Israel's latest actions in Lebanon. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
3: In Philippines, a powerful earthquake of magnitude 7.8 on the Richter scale shook the Mindanao region in southern Philippines early this morning, with a tsunami likely on some regional coasts. Power outages were reported and people were urged to go to higher ground. No further information on damage or casualties was immediately available. The Pacific Tsunami Warning Center said tsunami waves up to 3 meters are possible on some coasts of the Philippines. On to sports. In tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam title, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling 5-set final to win the French Open crown at Roland Garros. The world number 3 prevailed 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in a 4-hour and 20-minute contest on the court Philippe Chatrier. The victory ended Zverev's long wait for a major title after runners-up finishes at the US Open in 2020, the French Open in 2024 and the Australian Open in 2025. The 29-year-old became the first German man to win the French Open since Henner Henkel in 1937. In our bilingual live phone-in program Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on Khet Bachao Abhiyan, restricting fertilizer use and promoting soil health, with Dr. J.P.S. Dabas, former principal scientist, ICAR, Indian Agricultural Research Institute. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
5: Thank you, Anuja. Top front page headline in the Statesman writes, Nepal signals pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, need paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team house at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
3: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
6: Akashwani se peshe khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है यह इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है अब खबरें तफसील से मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई नाफिज करेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदो अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है मगरबी बंगाल में एबीपीएमजेएवाई के निफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ्फुज़ फराहम होगा जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कान में बिला रुकावट मदद मिलेगी इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निजाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
7: NTA की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीक़ेकार के तहत करवाया जाएगा। NTA ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाक़ है। NTA ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के बारे में मालूमात उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG इम्तिहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को NTA की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल CBI में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
6: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी तेज जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।

0: बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए इम्तहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया की

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रूम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश। दक्षिण बिहार में मौसम गर्म रहेगा। और पटना के दिलीप कुमार तथा सीवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की ओर से राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने इस चुनाव के लिए भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवासी श्रमिक कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर मधुबनी जिले में असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। जिले के खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव में हुए इस हमले में श्री प्रसाद सुरक्षित बाहर निकल आ गए। घटना के बाद श्री प्रसाद ने कलवाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
3: कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे अनुचित डिमांड करने लग गए बोलो, और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहां से उनके जाने की, जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया, जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी सारा मिला है और जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है, और दो चार महिलाएं ने आगे किया था उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है, और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है और सब पे कार्रवाई करके FIR की जाएगी पुलिस के बयान पे।
0: इधर मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि यह घटना विपक्षी दल राजद के असामाजिक और उग्र कार्यकर्ताओं की सुनियोजित साजिश का परिणाम है। पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिद्दुपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल पर अगले माह से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 पर बन रहे इस पुल की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर पुल और 10 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। सचिव ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर 4988 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुल के आधे हिस्से पर यातायात पहले से जारी है। राज्य से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में लगे डिब्बों की अगले एक सप्ताह के अंदर जांच की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन के एक स्लीपर कोच में कपलिंग टूटने की घटना के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मुख्यालय वर्कशॉप तथा मंडल के अधिकारी अत्यधिक खराब डिब्बों वाली रेलगाड़ियों की जांच कर उन्हें हटाएंगे। साथ ही पीरियोडिक ओवरहॉलिंग करने वाले सभी वर्कशॉप का अगले एक माह में ऑडिट किया जाएगा। राज्य के 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले राशन कार्डधारी परिवारों को उनके घरों तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनाज पहुंचाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार पटना जिले के मसौढ़ी और वैशाली जिले के हाजीपुर में इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार राशन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि देगी। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग देश के विभिन्न भूभागों में हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों का प्रसारण करता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
4: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुसार

0: 11 जून से प्री मानसून की गतिविधियों में तेजी आने के पूर्वानुमान हैं। इससे प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर देश में कई परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु
0: पटना के दिलीप कुमार और सिवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मुजफ्फरपुर के सुधांशु शेखर ने रजत पदक प्राप्त किया। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में पटना की ईशानी पाठक और मुजफ्फरपुर की नव्या गोयनका संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। 10वीं दक्षिण एशिया आत्यापात्या चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के बाद भारतीय टीम के सदस्य पटना के वैष्णवी और अरवल के दिवाकर कुमार का पटना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन राव भागवत अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे मुंगेर में आयोजित बिहार झारखंड के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में शामिल होंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में बिहार और झारखंड के 127 शिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अररिया जिले में होटलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए जांच की। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में लोहागाड़ा इस्मत टोला में छापेमारी कर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दानापुर रेलवे सुरक्षा बल ने पटना के मीठापुर रेल लाइन के किनारे अतिक्रमण करने के मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के फुलवारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने खगौल लक से 10,000 के जाली नोट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की विशेष खबर है, यातायात पुलिस में 35 पार उम्र के सिपाही तैनात नहीं होंगे। दैनिक जागरण ने नीट पेपर लीक मामले पर शीर्षक दिया है, संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा, उसकी परिभाषा में किसे माना जाए पेपर लीक। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में नीली क्रांति का महाअभियान, बेकार पड़ी चौर की जमीन को तालाब बनाकर संवारेगी सरकार। प्रभात खबर लिखता है, स्कूलों और कॉलेजों में बिना हेलमेट वाले वाहनों की होगी नो एंट्री, जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की और मौसम विभाग का पूर्वानुमान सीतामढ़ी मधुबनी अररिया किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश। दक्षिण बिहार में मौसम रहेगा गर्म। पटना के दिलीप कुमार तथा सीवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। इस गीत को आवाज़ दिया है चिन्मय श्रीपदा एवं गोपी सुंदर ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है विशाल शेखर का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। अब जो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है वो है फिल्म एनिमल से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत है श्रेयस पुराणिक का।

0: Akashvani at 90. बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म कबीर सिंह से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने। गीतकार एवं संगीतकार हैं मिथुन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म तड़प से। इस गीत को आवाज़ दिया है शिल्पा राव, दर्शन रावल एवं साथी ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

AIR at 90. आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं नेपाली की रचना।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं रणवीर प्रसाद सिंह। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थे रणवीर प्रसाद सिंह। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म इज्जत से। इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी ने।

लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आपने ये गीत सुना फिल्म इज्जत से। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आंधी से। इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है अखियों के झरों के फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दिया है हेमलता ने। गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन। श्रोताओं, इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म बाबू से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत जो लिया है हमने वो है फिल्म ब्लैकमेल से। इस गीत को आवाज़ दिया है किशोर कुमार ने। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं लोकगीत। कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव।

डम डम डमरू बजावे लन हमार जोगिया डम डम।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये शिव भजन। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश क्रेश और बाल्टी बॉय।

सुर धरा बे अंधरा ताना बजाबे बहिरा सुर धरा बे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव। अभी आपने इनके स्वर में सुना ये शिव भजन। अब आइए इनके स्वर में ही सुनते हैं ये गोदना गीत।

ठुमकी के चाल चले ब्रज के नगरिया, ठुमकी के चाल चले।

ब्रज में जाके बोले मीठी मीठी बोलिया, ब्रज में जाके बोले मीठी मीठी बोलिया, देखी श्याम यहाँ गोपियन के टोलिया, देखी श्याम यहाँ गोपियन के टोलिया, कहले गोतना कहले गोतना, गोदाई ले अपन मन के हो, गोदाई ले अपन मन के हो, गोदाई ले

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। कलाकार हैं बासुकी प्रसाद यादव। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये पूर्वी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। कलाकार थे बासुकी प्रसाद यादव। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्म से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म धुरंधर से। इस गीत को आवाज दिया है अरिजीत सिंह एवं अरमान खान ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है शाश्वत सचदेव का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सैयारा से। इस गीत को आवाज दिया है फहीम अब्दुल्ला ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है इरशाद कामिल, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान नाजमी का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म एक दिन से। इस गीत को आवाज दिया है अरिजीत सिंह ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है राम संपत का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से। अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म ओ रोमियो से। इस गीत को आवाज दिया है अनन्या वाडकर ने।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से उमंग
2: अंतराल से पहले आपने सुना द गर्लफ्रेंड फिल्म का नगमा आवाजें थी चिन्मयी श्रीपदा हिशम अब्दुल वहाब और साथियों की गीत लिखा था गरिमा ओपरा ने और संगीतबद्ध किया था हिशम अब्दुल वहाब ने कार्यक्रम है नई फिल्मों से

0: नई फिल्मों से कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना बरेली की बर्फी फिल्म का नगमा। गीत लिखा था पुनीत शर्मा ने, संगीतबद्ध किया था समीरा कॉपीकर ने, आवाज़ें अरिजीत सिंह, समीरा कॉपीकर और साथियों की थी। इसके साथ ही आज का नई फिल्मों से कार्यक्रम का सफर हुआ पूरा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गुलदस्ता।

गुलदस्ता कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना सफर फिल्म का नगमा। इंदी वर्ने से लिखा था, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी, आनंद जी ने आवाजें मनाड़े और साथियों की। गुलदस्ता कार्यक्रम के आरंभ में हमने ये गाना आपको सुनवाया। इसका श्रेय, इसका उद्देश्य ये था कि ये नदियाँ चलती हैं तो कहाँ जाती है, मनुष्य को नदियों की रवानी से कुछ सीख लेनी चाहिए। चलते रहने की जो गाथा समय की है, नदी की है, हवाओं की है, ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होना चाहिए। लेकिन इन नदियों का ठहराव कहाँ है? इन नदियों का ठहराव है सागर, महासागर, अर्थात हम पूर्णतः सागर से जुड़े हुए हैं। और ये सागर पृथ्वी पर जो जल के पूर्णतः स्रोत का एक मुख्य अवयव है, जल से ही भाप उड़कर आकाश में और फिर वहाँ से वर्षा होती है पूरी पृथ्वी पर, जिससे कि ये जल का जो निर्गमन कार्यक्रम है ये चलता रहता है। सागर अगर ना हो, जरा हम कल्पना करें, तो फिर क्या हो? और सागर आज नदियों की मलिनता से मैले होते जा रहे हैं, जिसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ रहा है। इसी दिशा में प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और इसका उद्देश्य ही है समुद्रों और महासागरों के महत्व और उनमें मौजूद जीवन और उनके संरक्षण के प्रति मनुष्य में जागरूकता कैसे फैले, इसका उद्देश्य है मनुष्य को इसके प्रति जागरूक करना। इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने की अवधारणा सबसे पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसके बाद से 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सागर जो हर तरह से हमसे जुड़ा हुआ है, और महासागरों का लगातार क्षरण होना यानी महासागरों में विषैली पदार्थों का पहुंचना नदियों के द्वारा, ये हम सभी के जीवन को खतरा उत्पन्न करने वाला है, तो इस पर हमें ज़रूर जागरूक होना चाहिए।

सागर किनारे ही दिल ये पुकारे, अभी आपने सुना सागर फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें थी। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था राहुल देवर्मन ने। बातें हो रही आज विश्व महासागर दिवस की। इसको मनाने के उद्देश्य के बारे में हमने बात किया कि पूरी दुनिया में महासागरों के प्रति जन समुदाय में जागरूकता फैले, इसके लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। और धरती के फेफड़े के रूप में भी सागरों को माना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% हिस्सा महासागर द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। और महासागरों का इतना ही कार्य नहीं है, महासागर मौसम को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आजीविका और खाद्य संरक्षण के लिए तो यह विख्यात है ही, क्योंकि यह दुनिया भर में अरबों लोगों को भोजन, समुद्री खाद्य और आजीविका प्रदान करता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी व्यापार होते हैं उसका 80% हिस्सा सागरों के द्वारा ही होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में व्यापार संचालन में भी महासागरों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें अनेक जलीय जीवों का भी

0: बसेरा है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु नियंत्रण के लिए बहुत सहायक है। ये सभी चक्र महासागरों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, तो महासागरों का योगदान निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। तो बातें और भी होंगी, बातचीत के साथ साथ गाने भी हम सुनेंगे, लेकिन अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आपने सुना दिल दिया दर्द लिया फिल्म का नगमा, मोहम्मद रिफ साहब ने इसे गाया था, गीत लिखा था शकील बादायने ने, संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, दिल को क्यों बहलाए कोई सागर, अगर हमें सागर का ख्याल नहीं तो सागर को हमें कितना ख्याल हमारा। तो ये बड़ी बात है कि संसार में वो चीज़ें हमारे लिए सार्थक हो जाती हैं जिसके प्रति हम जागरूक होते हैं, और वो चीज़ें हमारे लिए निरर्थक हो जाता है जिसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं रहता। अगर हम अपने जीवन को ही निरुद्देश्य मानने लगें, अपने जीवन से ही अपना ख्याल हटा लें, तो शायद ये जीवन भी हमारा हमसे रूठ जाए। तो आज की स्थिति ऐसी ही है, भागम दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने सुख सुविधा के अलावा किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। नदी हो, तालाब हो, झील हो, झरने हो या फिर सागर, सब कुछ मानव के सुख सुविधाओं के भेंट चढ़ रही हैं, और फिर पूरी दुनिया में इस तरह से प्रदूषण फैल रहा है जो ये पूरे जीव जगत के लिए विषैले विषाक्त रूप में सामने आ रहा है, और ये जीवन के लिए ख़तरा है, पूरी पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के लिए हम खतरा कह सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए हम मानव को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की नदियाँ ये सभी सागर में ही जाकर मिलती हैं, और हम अपना सारा कचरा अपने घर से और अपने आसपास के या फिर कहीं भी हम देखें कोई भी किसी प्रकार का कचरा सीधे नदियों में डाला जा रहा है और वो फिर सागर में जा रहा है। अनेक अनेक विषैले पदार्थों का मिश्रण नदियों के माध्यम से सागरों में होता जा रहा है, जिससे कि समुद्री जीवों के साथ साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस क्षति को मानव समुदाय भी झेल रहा है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, वह है जागरूकता, और फिर सब कुछ ठीक होने की हम कामना कर सकते हैं।

0: बदन।
1: ओहरे ताल मिले नदी की जल में, अभी हमने सुना अनोखी रात फिल्म घनकबा। मुकेश की आवाज़ थी, गीत लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था रोशन ने। कार्यक्रम है गुलदस्ता, बातें आज हो रही हैं महासागरों और सागरों की। सागर जो इस पृथ्वी के फेफड़े भी कहे जाते हैं, या फिर हम कहें कि सागरों के बिना जीवन अधूरा, पृथ्वी की कल्पना अधूरी। जीवन के सभी आयामों को छूता महासागर और उसके महत्व को तो कोई कागज़ लिख ही नहीं सकता, कोई कलमकार उसे अपने कलम में कलमबद्ध नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण है ये सागर। और कभी हमने सोचा है कि सागर में इतने जल और फिर इन जलों का संपूर्ण जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोग हो रहा है? इतना खारा जल, और आज विज्ञान इस तरह से प्रगति कर चुका है कि पूरी दुनिया में सागर के खारे जल को भी पीने लायक बनाया जा रहा है। तभी तो सुदूर खाड़ी के देशों में या फिर कई कई अन्य देशों में भी सागर के जल का उपयोग बहुत हद तक पीने लायक बनाकर किया जा रहा है। और इसका संयंत्र अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के देशों में फैलता जा रहा है, क्योंकि हमारे कार्य कुछ ऐसे हो गए कि भूगर्भ के जल भी अब बहुत नीचे तक चले जा रहे हैं और फिर वो भी गंदा हो रहा है। मनुष्य अपने सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में इस तरह से भागता दौड़ता जा रहा है कि कोई भी चीज़ दुनिया की, प्रकृति की दी हुई अनूठी कितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ हो, वो सब कुछ दूषित हो जा रहा है। इसमें भूगर्भ का जल हो, नदियों का जल हो, तालाब का जल हो, या फिर सागरों का जल, कुछ भी अछूता नहीं है। और इससे तकलीफें तो आ ही रही हैं। आज जो इतनी आपदाओं का दौर चल पड़ा है, कितनी कितनी सारे आंधी, चक्रवात, तूफान और न जाने क्या क्या, कहीं तापमान बहुत अधिक तो कहीं वर्षा बहुत अधिक, कभी ठंड में ठंड का कोई प्रकोप नहीं तो कभी गर्मी की सीज़न में इतनी वर्षा की ठंड जैसा माहौल, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये जलवायु परिवर्तन क्यों इतनी तेज़ी से क्यों बदल रहा है? जलवायु तो इसका एक ही मात्र उत्तर है, और वह उत्तर है हम मनुष्यों की अंधी दौड़, जो सुख सुविधाओं के इस अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम बढ़े जा रहे हैं, और फिर प्रकृति को इस तरह से हमने नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति अब विपदाओं का रूप लेकर हमें पर टूट पड़ी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है हमारी जागरूकता। इसी जागरूकता के लिए तो पूरी दुनिया में आज की तिथि को, यानी 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। इन बातों को हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता जरूर होगी, तभी हम इस विपत्तियों से बच सकते हैं। हमारी बातचीत आज गुलदस्ता कार्यक्रम में बस इतने ही। वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।
1: मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम नारी लोक।

नमस्कार बहनों, नारी लोग कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। बहनों, हमारी प्रकृति कितने ही रहस्यों से भरी है। यहाँ प्रकृति की तुलना हमेशा किसी गहरे अर्थ में की जाती है। कवियों, गीतकारों, संगीतकारों ने प्रकृति को अपने गीतों, कविताओं में इस प्रकार दर्शाया है कि हम उसे कभी नहीं भूल सकते। चांद तारे की तो बात छोड़िए, हमारे गीतकारों ने सागर को भी प्रेम की गहराई मापने वाला मापक बना दिया। कितनी अजीब बात है ना, जो सागर अपने खारे पानी के लिए जाना जाता है, तूफानों के लिए जाना जाता है, उसकी गहराई में कितने रहस्य छुपे हैं। महासागर जहाँ नदियाँ जिसकी गहराई में मिलती है, खारे पानी का वो विशाल भंडार है जो हमारे पृथ्वी के लगभग 71% भाग को कवर करता है और इसमें ग्रह के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समाहित है। ये पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने, ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य के लिए हमारे महासागरों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष बहनों 8 जून को यानी आज के दिन विश्व महासागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। महासागर दूरस्थ पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, वे रोजमर्रा की जिंदगी, जलवायु स्थिरता और आज के बच्चों के भविष्य के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। इसकी स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी और इसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। ये हमारे जीवन का स्रोत है जो मानवता और पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीवन के जीवन यापन का आधार है। ये पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है और दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। महासागर हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत हैं और जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महासागर मानव द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30% अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। विश्व महासागर दिवस एक जिम्मेदारी से रूबरू कराता है, हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र विषय के साथ ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने और उनकी रक्षा के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। ये हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करते हैं, ये वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जटिल खाद्य प्रणालियों का समर्थन करते हैं और लाखों प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्वस्थ महासागर मत्स्य पालन, पर्यटन और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। हमारे सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ता तापमान और अत्यधिक समुद्री गतिविधियां समुद्री जीवन के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं। ये दिवस महासागर पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से अवगत कराता है। बहनों, प्रकृति ने खुद का ध्यान रखते हुए प्रत्येक चीज का निर्माण किया है, हमें भी चाहिए कि हम प्राकृतिक उपादानों का सही उपयोग करें और उनका संरक्षण करें। बहनों, चर्चा आगे भी है लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
4: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर आपके कार्यक्रम नारी लोक में आप सभी का स्वागत है। बहनों, अब बात करते हैं आपके हमारे स्वास्थ्य के बारे में। बहनों, प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। कई बार हम अपने शरीर में हो रहे छोटे परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मानव शरीर में मस्तिष्क सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारी सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जब इस महत्वपूर्ण अंग में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो एक गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इस जानलेवा बीमारी के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों को शिक्षित करने और इसकी शुरुआती लक्षणों को पहचानने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम एक क्लोजर लुक यानी एक करीबी नजर, ये विषय लोगों को मस्तिष्क से जुड़े छोटे छोटे लक्षणों को गंभीरता से देखने और समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करता है। ज्यादातर लोग इसके लक्षणों को सामान्य तनाव, माइग्रेन, कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं, जो बाद में घातक साबित होता है। सुबह के समय बहुत तेज सर दर्द होना या रात में दर्द से आंख खुल जाना, बिना किसी पाचन समस्या के बार बार उल्टी या मितली आना, आंखों की रोशनी का कम होना, धुंधला दिखना या बोलने में कठिनाई होना, याददाश्त कमजोर होना या स्वभाव में अचानक बदलाव आना, चिकित्सा विज्ञान में आए नए आविष्कारों जैसे आधुनिक न्यूरोसर्जरी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की मदद से अब मस्तिष्क ट्यूमर का इलाज संभव हो चुका है। इस दिवस का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये लोगों के मन से इस बीमारी के डर और अंधविश्वास को दूर करता है। बहनों, महिलाओं में ब्रेन ट्यूमर का खतरा 2 गुना होता है। ब्रेन ट्यूमर या कैंसर में होने वाला सिरदर्द सामान्य सिरदर्द से अलग होता है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और आप दर्द निवारक औषधियों से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हैं। मेनिंगियोमा महिलाओं में होने वाला सबसे आम प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में होता है और 85% से अधिक मामलों में ये कैंसर रहित होता है। बहनों, ये किसी भी उम्र में होने वाली बीमारी है, जिसे सही समय पर इलाज के साथ ठीक किया जा सकता है। महिलाओं में इस रोग के लक्षण में मासिक धर्म में अनियमितता, वजन में अचानक उतार चढ़ाव या बहुत अधिक प्यास आना, बिना किसी स्पष्ट कारण के हमेशा बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, कई बार इसे मेनोपॉज या अन्य सामान्य समस्या

0: समझ लिया जाता है, जबकि ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को सही शब्द खोजने में कठिनाई होती है, कहते कहते अधूरा शब्द निकलता है या कुछ गलत इस्तेमाल होता है। ये मन के उन हिस्सों पर प्रभाव डालता है जो भाषा और समझ को नियंत्रित करते हैं। शुरुआत में यह समस्या कभी कभी होती है, लेकिन समय के साथ ये काफ़ी हद तक स्पष्ट हो सकती है। बहनों, जानकारी, सजगता और आपको खुद की परवाह ही किसी बीमारी का सही इलाज साबित होता है। बहनों, इस बीमारी से बचाव की कोई शत प्रतिशत गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके सटीक कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होते, लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप इसके जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तंबाकू, शराब से दूरी, तनाव पर नियंत्रण ही हमें इस बीमारी से बचा सकता है, और सबसे बड़ी बात, लक्षणों को समय पर पहचानना। बहनों, अपने शरीर का ध्यान रखें, उसमें हो रहे बदलावों पर भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सजग रहें। बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए, प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। भेंट वार्ताकार है मीरा झा।
1: श्रोताओं, इस वर्ष आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा करने को है, इसी श्रृंखला में विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जिनका नाम आप श्रोताओं के लिए कभी अनसुना नहीं है, जिनकी प्रतिभा के आप युगों तक कायल रहे हैं, जिनके मुख से वंदे मातरम सुन आपने दिन की शुरुआत की होगी, जिनके जय हिंद सुन अपने रात्रि के कार्यक्रमों को विराम दिया होगा, प्रतिदिन उनकी प्रस्तुति सुनते हुए आप विभोर हुए होंगे, जिन्होंने अपने सेवा के अनमोल 40 वर्ष आपकी सेवा करते हुए समर्पित किए। जी हाँ, आप हैं डॉक्टर मीरा झा। आज इनको हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ताकि इनकी बातचीत, इनके इतने दिन के अनुभव हम आप तक पहुंचा सके। डॉक्टर मीरा झा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: तो मैम, आप इस सेवा में कब से आई, कैसे आई?
2: होती
1: तो ये आकाशवाणी की जिम्मेदारी, घर, लेखनी, शिफ्ट की नौकरी, सब कुछ कैसे संभाल पाती थी?
2: मत पूछिए, ये तो महिलाओं के जीवन का एक जबरदस्त अनुभव है। घर परिवार, बाल बच्चे, मेरी माँ का भी साथ मिला
1: जी।
2: माँ ने बहुत सपोर्ट किया, और मुझे लगता है बेटियों को आगे बढ़ाने में माता पिता की भूमिका बहुत होती है
1: जी।
2: बहुत होती है। जहाँ और लोग, परिवार के और लोग बहुत संवेदना से आपको नहीं लेते हैं, वहाँ आपके माता पिता आपको लेते हैं और आपकी संवेदना को समझते हुए वे आपका सहयोग करते हैं, और तब आप कुछ कर।
1: लड़कियों के अगर आगे बढ़ रही हैं तो उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान।
2: आज तो माहौल बिल्कुल खुल गया है और माता पिता हथेली पर रख के सुविधा उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: तब के उस कठिन समय में सारा संघर्ष अपने पर झेल करके वो अपनी बेटियों को सुविधा उपलब्ध कराते थे
1: जी,
2: है ना, और वो जाते थे।
1: घर की जिम्मेदारी, बच्चे, इधर काम करना है, ऐसे में लेखनी संभालना।
2: एक बात कहूँ, लेखनी के लिए वो आदमी के अंदर की जो परिस्थितियां होती हैं ना, वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आपके अंदर अगर कोई कलाकार का दिल लड़कता हो, आप कुछ पेंटिंग बनाने को है तो आप उस काम को करेंगे। मेरे अंदर, मेरे आसपास का वातावरण, इतने सारे बुजुर्गों के बीच रहने का मौका मिला है, मुझे मेरी दादी के साथ रहने का एक मौका मिला है। चर्चा इसको करना क्यों आवश्यक समझती हूँ कि संस्कार बचपन से मिलता है। आपको जो होना होता है, प्रकृति वैसा माहौल आपके आसपास बनाना शुरू करती है प्रकृति। कि जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ
1: जी,
2: एक तो लिखने का अभ्यास ऐसे ही बन गया, वो इमरजेंसी के दौरान इतनी सारी रचनाएं हुई मेरी, कविता, कहानियां।
1: स्कूल के दौरान से ही आपको लिखने का?
2: हाँ, कॉलेज के दौरान से। स्कूल के दौरान से मैं देखती थी।
1: अच्छा।
2: मेरे भाई कविता लिखते थे, मेरे
1: पिताजी
2: कुछ लिखते थे,
1: उनको देखते।
2: हाँ, तो तब लिखा उखा नहीं था, लेकिन कॉलेज के दौरान जो है, कॉलेज का वार्षिक फंक्शन था और उसमें कहा कि तुम कुछ बोलो तुम भी, तो मैंने पहली कविता लिखी थी, नहीं जानती छंद बंदरे नहीं मुझे तुक्का ज्ञान, है ना, कैसे मैं कविता कर पाऊँ अनजान, कुछ इस तरह से लिखा था। तो कुछ चंद पंक्तियाँ मैंने लिख दी थी। तो उसके बाद जब इतना कुछ हुआ, आकाशवाणी ने

0: प्रतिदिन लिखने का काम दे दिया
1: जी,
0: रचनात्मकता आपको प्रस्तुति देनी है, आप घर आए ठीक है, लेकिन दिमाग में है कि कल की प्रस्तुति में क्या
1: क्या करना है,
0: कल की प्रस्तुति में क्या दूंगी
1: जी,
0: फिर अगले दिन की प्रस्तुति। तो ऐसे में मुझे लगता था कि अब नाटक बनाओ, उससे सहयोग लो, उससे सहयोग लो, फिर सब चलो कविता लिख दो, चलो कहानी लिख दो, चलो
1: वहां से
0: मेरी यात्रा, अनवरत यात्रा जो शुरू हुई लेखन की
1: जी,
0: कलम पकड़ने की, वो वहां से शुरू हुई। मुझे लिखना मेरी मजबूरी थी, किसी की भी मजबूरी थी, हम सारे साथी थे तो किसी की भी, तो कोई कुछ लिखता था,
1: मगर वो मजबूरी, हर किसी की मजबूरी इस तरीके से रंग नहीं लाती जिस तरीके से।
0: हाँ ये मैं मानती हूँ, हाँ तो लिखना मजबूरी थी, सबों ने लिखा, सबों ने प्रसारित किया, सबों की रचना प्रसारित होती थी, और सबों की पर वो जो ग्रेडेड ग्रेडिंग होती थी, अगले दिन मीटिंग में उस पर चर्चा होती थी, सब कुछ होता था, तो वो इस तरह से होते थे। मुझे लगा भीला विषहरी पर, अब देखो भीला विषहरी एक ऐसा पर्व है भागलपुर का
1: जी,
0: कि हर साल ये पर्व आता है, हर साल इसकी रिकॉर्डिंग ओबी रिकॉर्डिंग करके लोग लाते थे, मणिकांत जी लेके आते थे, विनोद जी ने इस पर नाटक बनाया था है ना, और बहुत लोग जिसको जैसे हुआ वो प्रसारित करते रहे थे। मुझे भी जब मौका मिला कंपेयरिंग में, कथा के रूप में कुछ भी हो, वो सब होते होते ऐसा ना मेरे मन में आया कि अच्छा थोड़ा सा इस पर और शोध किया जाए, बिहुला की यात्रा कैसे शुरू हुई होगी, यहाँ से मंजूसा बहा होगा, कैसे गया होगा, कहाँ पर गंगा में मिला होगा, गंगा की यात्रा करती हुई बिहुला कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ क्या परेशानी हुई होगी, और ऐसी स्थिति में वो कहाँ पर पहुँची होगी है ना
1: जी।
0: फिर अपना भी दिमाग, अपना भी एक आध्यात्मिक है कि भाई बिहुला ने कहाँ स्वर्ग लोक के, तो बहुत सारी बातें दिमाग में आते शोध के रूप में लेते
1: जी,
0: लेते
1: जी।
0: और अंत में बिहुला विषहरी उपन्यास मैंने लिखा।
1: तो ये एक लेखन नहीं होता, अंदर से जिज्ञासा भी रही आपने शुरू से हर चीज को जानने के लिए।
0: अच्छा तो फिर चरखा क्या बोले उपन्यास मेरे उसी जिन बचपन के जिन संस्मरणों की बात मैं कर रही थी उसी समय की प्रस्तुति रही है। चरखा क्या बोले गणेश जी का समय था
1: जी,
0: उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जन्माष्टमी आ रही, कुछ नए तरीके से प्रस्तुति करिए, और मैंने काव्य रूपक एक लिखा
1: जी,
0: लोकगीत की सामग्री लेकर के। आप कार्यक्रम करते हुए मेरी रचनात्मकता को, कितनी पुस्तकें मैंने लिखी, मैंने क्या किया, मैं कैसे कर पाई, कितना सुखद एहसास है कि मैं लगातार लंबे समय तक यहाँ लगभग 25 वर्षों तक मैं गांधी कथा कार्यक्रम करती रही, और जब 150 वर्ष पूरा हो गया गांधी जी के जीवन का, तो मैंने उस अवसर पर, मैंने भी रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उस अवसर पर मैंने एक पुस्तक, बहुत सारे लेख थे मेरे पास, मैंने कुछ लेखों को, महत्वपूर्ण लेखों को इकट्ठा करके मैंने वो पुस्तक लिखी, और उसका शीर्षक दिया गांधी कथा। और आपको आश्चर्य लगेगा, आज उस पुस्तक की डिमांड है, वो पुस्तक चर्चा में है, उस पुस्तक की भाषा लोगों के बहुत दिल के करीब है, और उसका पहला लोकार्पण अमरकंटक विश्वविद्यालय से वहाँ के भिषे ने किया था ऑनलाइन।
1: तो आप उद्घोषक, जैसे कि आपने लेखन का कार्य तो आप कर ही रही हैं,
0: अभी
1: उद्घोषक रही, तो उद्घोषक के साथ आप ड्यूटी ऑफिसर की भी जिम्मेदारी आपने उठाई,
0: करना पड़ता था भाई
1: ड्यूटी ऑफिसर की भी जिम्मेदारी आपने उठाई। ऐसे में जब आकस्मिक प्रसारण को संभालना होता था, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ आकस्मिक प्रसारण की स्थिति वही थी, अभी अचानक सूचना गई
1: जी,
0: फोन तो था नहीं उस समय, फोन था नहीं, ऑफिस से किसी प्यून को, किसी के हाथ से सूचना गई कि शाम का उद्घोषक नहीं आ रहा है, आप आ जाइए ड्यूटी ऑफिसर के इसके लिए। अब कहाँ है, क्या है, किस परिस्थिति में है, नाश्ता पानी कैसे, क्या कहाँ मैनेज करके किसी तरह से पहुंचे।
1: हाँ।
0: तो इस तरह से आकस्मिक प्रसारण तो संभालना पड़ता था।
1: उद्घोषक रही और ड्यूटी रूम की, जैसे कि अभी हमने जाना की जिम्मेदारी उठाई, उसके साथ साथ और भी क्या कुछ।
0: हाँ उसके लेखन तो मेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि इतनी सामग्री मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, इतना कुछ देखा मैंने
1: जी।
0: मैंने अध्यात्म का भी, मेरे माता पिता बहुत आध्यात्मिक है ना,
1: तो इसके साथ लिखने के साथ साथ यहाँ पे आपने ड्रामा और भी किसी चीज में, नाटक में,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आए दिन, अब बरसात के समय में वर्षा का

0: बरसात से रिलेटेड
1: जी,
0: किसी भी ऋतु से रिलेटेड
1: सबसे कर,
0: हाँ वो सारे रूपक लोकगीत
1: जी।
0: कई बार ऐसा हुआ है कि लोकगीत कलाकार को

0: कोई है नहीं, सारे लोग आ गए, जरा सा परिचर्चा संचालन कर दीजिए, है
1: ना। तो इतना कुछ करते हुए आपने अपनी लेखनी भी संभाली, तो आपकी कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं उनके बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ, मैं बता रही थी ना, सबसे पहली पुस्तक मेरी मुक्ति के सोपान तक
1: जी,
0: वो 86-87 में, मतलब ये ऑफिस खुल चुका था, ये यहाँ आदमपुर वाला, नए ढंग से कुछ काम किया जाए, है ना। मेरी दादी का गाया हुआ एक सोहर था।
1: अच्छा।
0: तो लोकगीतों की तो बात लोकगीत जैसी होती है ना, मैंने उसमें से सामग्री ले, मटेरियल लिया
1: जी,
0: और उसको लेकर के फिर उसमें से काव्य रूपक मैंने बनाया।
1: अच्छा।
0: है ना, वो लोकगीत की तो भाषा अलग थी, लेकिन उसको कविता में ढाल करके वो रूपक बनाया, और कृष्ण जन्म की वो रात्रि का मैंने वो विवरण किया। वो
1: अच्छा।
0: प्रसारण हुआ, उसमें विनोद जी ने भी भाग लिया था, उसमें प्रकाश जी ने भी भाग लिया था, बहुत सारे, मणिकांत जी ने थे, बहुत सारे लोग थे।
1: अभी तक कितनी रचनाएं अगर देखे तो
0: यहाँ यहाँ यहाँ के प्रसारण,
1: यहाँ के प्रसारण में नहीं, आपने जो कुछ,
0: मेरी पुस्तक है, 10 पुस्तकें हैं मेरी,
1: 10 पुस्तकें, नाम जान सकते हैं?
0: हाँ हाँ, आप नाम जानिए, मैं आपको बताती हूँ,
1: हमारी श्रोता भी जानने चाहेंगे।
0: मेरी पहली पुस्तक है
1: जी
0: मुक्ति के सोपान तक,
1: जी
0: एक रूपक है
1: जी,
0: और रूपक पर आधा मैंने जिस रूपक की चर्चा की, तो कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि ये रूपक तो बना आधे घंटे का बन गया, प्रसारित हो गया, बड़ी तारीफ हो गई, बात खत्म, लेकिन इसमें कितनी बातें हैं मुझे कहने के लिए। और मैंने जब उस पर सोचना शुरू किया तो 8 सर्ग में उस पुस्तक को मैंने लिखा,
1: मुक्ति के सोपान तक।
0: हाँ, मुक्ति के सोपान तक, और वो पुस्तक मैंने छपी मेरी
1: जी।
0: फिर दूसरी, फिर मैंने चरखा क्या बोले उपन्यास लिखा, तो वो लिखा
1: जी।
0: फिर शबरी खंड काव्य लिखा, शबरी तो खैर शबरी जैसा पात्र, सबरी पर बहुत लोगों ने अनेक अनेक प्रकार से लिखे हैं, लेकिन मेरा वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है
1: जी।
0: के बाद फिर मैंने लिखा हाहा पंचकुमारी।
1: आपकी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में ये भी सुना है कि उनके PhD
0: हाँ हो रहे
1: जी,
0: हैं।
1: हाँ, जी
0: बहुत लोग, एक तो सबसे पहले 2018 में किया एक लड़की अमृतसर विश्वविद्यालय से, हाँ, बिहुला विषहरी पर तो अनेकों शोध हो रहे हैं, जहाँ तहाँ जहाँ से सुन पढ़ रहे हैं मुझे, जहाँ लोक साहित्य पर कोई भी शोध होता है मेरी उस पुस्तक को जरूर लिया जाता है। हाँ हाँ, लिया जाता है। फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में
1: जी
0: इतिहास में गांधी बोल करके, अच्छा, चरखा क्या बोले को भी शामिल किया गया, 2-3 पुस्तकें ली गई और उसको शामिल किया गया। अभी एक महिला कर रही है, वो कर रहे हैं, तो शोध में मेरी पुस्तक जा चुकी है निश्चित तौर पर। अब मुझे लगता है कि जरूर साहित्य में मेरा कुछ योगदान है, तब तो
1: जी बिल्कुल
0: इतनी चर्चा हो रही है, पूछ रहे हैं लोग, तो मैं गौरवान्वित हूँ इसके लिए।
1: अगर आपका अगर देखा जाए ना, तो पूरा एक जो ये 40 साल का जो समय है, इसके बारे में बातें तो इतनी है और इतना कुछ है कि जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं है हमारे पास, कि इसके लिए तो बातें अनंत है,
0: अनंत है।
1: और उसका, मगर अब चलते चलते अंत में हम, आप अपने श्रोता भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगी,
0: ये
1: इतने सालों से वो आपको सुनते आए हैं?
0: ये तो देखिए ऐसा है, एक समय था
1: जी
0: जब हमारे श्रोता जब रेडियो सुने जाते थे
1: जी,
0: वो समय था जब रेडियो सुने जाते थे और बहुत लोगों को लगता था अरे छूट ना जाए
1: जी
0: वो प्रसारण, ये कार्यक्रम, हाँ, इतने आग्रह से सुने जाते थे, लोग याद रखते थे, लोग तुरंत चिट्ठी भेजते थे, लोग तुरंत फोन करते थे, इस तरह से सुने जाते थे। तो रेडियो से भी अपना संपर्क जोड़े रखें, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं, युवा वर्ग तो बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलग हो ही चुका है, लेकिन फिर भी रेडियो से जुड़ें और उससे जो लाभ हो सकता है लें, क्योंकि आज भी बुजुर्गों के लिए, वैसे बुजुर्ग जो टीवी पर सबके साथ बैठ के नहीं दे सकते देख सकते
1: जी,
0: खटिया पर बैठ के कहीं बैठ करके कहीं, ठीक है वो अपना समय बिता रहे, उनके लिए तो रेडियो संजीवनी का काम करती है। हर कमरे में आज हर जगह टीवी नहीं हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: नहीं हो सकता है, लेकिन रेडियो हो सकता है। अब इसमें बहुत कुछ
1: आज
0: है,
1: तो रेडियो हमारे मोबाइल पर भी है।
0: अच्छा, और रेडियो मोबाइल
1: सबसे बड़ी बात है,
0: ये बड़े मतलब उम्मीद की बात है और बड़ी आसान्वित करने वाली बात है कि रेडियो मोबाइल पर भी है, सिर्फ जुड़ने की बात,
1: जुड़ने
0: है,
1: की बात,
0: जुड़ने की बात है। तो अपने आप को जोड़े रखिए, कम से कम अपना नाम ही सुनने के बहाने, कम
1: से
0: कम गाना सुनने के बहाने, कम से कम बहुत कुछ है,
1: बहुत कुछ है,
0: आप अपनी सुविधा से क्या ले सकते हैं।

0: क्या कर सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं, तो
1: और
0: वो
1: हमारी युवा पीढ़ी भी अगर इससे जुड़े तो वो अपनी जड़ों से जुड़ सकती है।
0: जड़ों से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे वो तो प्रोग्राम वगैरह भी देखते होते हैं, परीक्षा वगैरह भी देते
1: जी
0: होते हैं युववाणी कार्यक्रम की। इसीलिए युववाणी कार्यक्रम की
1: जी
0: जो शुरुआत हुई थी तो उसमें
1: जी
0: ये कहा जाता था कि आप अगर कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हो
1: जी
0: नौकरी के लिए, जीके बढ़ाने
1: जी
0: के लिए, तो आप युववाणी
1: ये
0: सुनिए।
1: विज्ञान वाणी है,
0: हाँ यु
1: विज्ञान,
0: हाँ
1: हाँ
0: विज्ञान वाणी है,
1: विज्ञान वाणी
0: वो
1: है जिसमें आप
0: सुनिए।
1: विज्ञान से जुड़े बातों को आप जान
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: उस समय ये स्पेशली कहा जाता था।
1: आज जहाँ टीवी सिर्फ एक कार्टून नेटवर्क पे बच्चों लोग को सीमित कर देती है, वहाँ आज अगर देखा जाए तो
0: रेडियो
1: रेडियो उनको
0: एक ऐसे
1: हर वर्ग के लिए।
0: ऐसे विजन में प्रवेश कराती है, ऐसे आंतरिक आकाश में, ऐसे विजन में
1: जी
0: प्रवेश कराती है,
1: जी
0: ऐसा विजन देती है, ऐसा दृष्टिकोण देती है कि वहां सोचने की क्षमता विकसित होती है।
1: बिल्कुल
0: अब वो तो उसी दृश्य पर केंद्रित करके कुंद करता
1: बिल्कुल।
0: है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैं ऐसा
1: आपका
0: सोचती
1: हमारे
0: हूँ।
1: साथ जुड़ने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और
0: क्या एक से एक लोग भी आते रहे, एक से एक विद्वान आते रहे, उन लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है, बहुत बहुत बहुत सौभाग्य मिला है।
1: जी
0: बहुत काम किए हैं, बहुत संवेदना से काम किए हैं, अपने काम को
1: जी
0: काम समझ
1: बिल्कुल
0: के काम किए हैं। तब समय की बात है, आज तो सुविधाओं की बाढ़ आ गई है, उस अभाव में हम लोगों ने काम किया है।
1: हमेशा आपकी वो जो मधुर वाणी है वो सुनना चाहेंगे, और ज़रूर आपके माध्यम से श्रोता और समझेंगे कि रेडियो की महत्वता क्या है।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थीं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमारा पूर्व प्रसारित विशेष कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा। भेंट वार्ताकार थीं मीरा झा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

बिल्कुल बहनों, इस गीत की तरह ही आकाशवाणी हमारी जिंदगी में शामिल है। आवाजों का ये कारवां ना जाने कब से है जारी, देश के कोने कोने में गूंजती है जिसकी वाणी, वो है आकाशवाणी। इसके साथ ही बहनों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम फिर होंगे आज कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी लोक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के इस

0: स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।

0: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला।
2: हाँ?
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
2: हाँ हाँ।
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो अरे मगर
1: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक
1: हाँ,
2: है
1: हाँ, अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई
1: हा?
2: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: ठीक है
1: चल चल चल चल, चल।
2: हाँ,
1: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: हाँ, ठीक है, चल, चल, चल, चल, चल,
3: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक

एक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
4: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
5: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोक रंग कलाकार हैं नवल किशोर पासवान। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे आइए सुनते हैं ये गंगा गीत।

0: अभी आप लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुन रहे हैं नवल किशोर पासवान को। गंगा गीत के बाद अब आइए सुनते हैं ये लोक भजन।
1: ए बबुआ रही

अभी आप लोक रंग कार्यक्रम में नवल किशोर पासवान को सुन रहे थे। अब आप लोक रंग कार्यक्रम पुनः 1:20 से सुन पाएंगे। 1:10 होने ही वाले हैं। अब आइए शांति शामिल होते हैं प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी रांची के प्रसारण में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव, विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका, डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल, जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई, कहा सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की यह यात्रा मानवीय सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इंडी गठबंधन ने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया।
1: हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है और 2 प्रत्याशी के साथ महागठबंधन मैदान में है, लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है उसके बारे में बताएं। इनके विधायकों को इन लोगों ने बंधक रख लिया है, बिना कैंडिडेट का नाम बताए जो हस्ताक्षर ब्लैंक पेपर पे लिया गया है वो किस तरफ इंडिकेट करता है यहाँ लोगों के सामने।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सचेतक नवीन जायसवाल के आवास में आज भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे परिमल नाथवानी भी शामिल हुए। इधर भाजपा भी एक सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी गणित भाजपा के पक्ष में है और पार्टी समर्थित प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे।
2: यकीन मानिए हमारा फोकस है कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस ने जिस बाहरी उम्मीदवार को यहाँ टिकट दे दिया जिसका झारखंड से कोई लेना देना नहीं, उसको हम लोग यहाँ से विदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव खेलेगी ना, यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड अंतिम में खोलेगी और एक चीज पक्का है, हम जीतेंगे कांग्रेस हारेगी।
0: रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जिले में तैनात सभी पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के पुलिसकर्मी शामिल थे। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी ने पुलिसकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
3: रांची जिला अंतर्गत जितने पीसीआर और हाईवे और माइक पेट्रोल में ड्यूटी करते हैं पदाधिकारी और जवान ड्राइवर, उन सभी का एक मीटिंग बुलाया गया था जिसमें सभी को उनके दायित्वों के बारे में बताया गया। किसी भी तरह का अगर आपराधिक एक्टिविटी हो रहा है, कोई असामाजिक कार्य हो रहा है, तो उसके प्रति इंटेलिजेंस डेवलप करना।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 जून को 10 वर्ष पूरे होने पर कल राज्यभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष्मान आरोग्य शिविर लगेंगे। साथ ही जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सीएचसी और एफआरयू में विशेष पीएमएसएमए सत्र चलाकर गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच और परामर्श किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है।
4: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 73,735 पर और निफ्टी 159 अंक गिरकर 23,207 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीहा गांव में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SDPO जीतवाहन उराव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
5: 3 बच्चियों की हत्या हुई है, अपने पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, थोड़ा मानसिक रूप से वो कमजोर भी हैं, उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा तो ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच शुरू कर रहे हैं।
0: गिरिडीह जिले में योग के नियमित आयोजन से लोग निरोग हो रहे हैं। पतंजलि परिवार की ओर से सालों भर योग का नियमित शिविर लगाकर लोगों को निरोग किया जा रहा है। योग करने वालों ने स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में योग के फायदे बताए।
6: मैं योगा में 2 साल से आ रही हूँ। योग करने से बहुत ही फायदा होता है। पहले शुगर 400 था और अभी मेरा शुगर 125 है। स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही जरूरी है।
7: बहुत से बीमारियों से ग्रस्त थे, अब हमें बहुत इसमें आराम मिल रहा है। मैं संदेश दूंगा कि आप योग से निरंतर जुड़े रहें और आज जो वर्तमान समय में लोगों को बीमारियां बढ़ती जा रही है, दवाओं पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो योग से ही छुटकारा मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास हो गया है और मैं आगे निरंतर योग करता रहूंगा।
0: CBSE और NCERT की पहल पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 15 से 18 जून 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन 10 जून तक होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव, विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से मिला झटका, डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज, जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल, जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई, कहा सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर

इस कृषि गीत के साथ ही आज का लोक रंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे नवल किशोर पासवान। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में 1:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी ग्रामीण श्रोता बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनय वाली सभ्य बहन का राधा के नमस्कार। बहन, उम्मीद करे छे कि तो सब कुशल मंगल हो और सब काम काज बढ़िया से हो रहा होते। बहन, आय हम अपना सी से बहुत ही

महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा करबे। आई पूरे दुनिया में विश्व महासागर दिवस मनैलो जाय रहलो छे। ई दिवस हर साल 8 जून का मनैलो जाय छे। बहन, ई दिवस मनावे के मकसद छे लोगों का समुद्र के महत्व का समझाना आरो होकरा बचावे के लिए लोगों का जागरूक करना। ई दिन के शुरुआत 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होलो रहे, वहीं पर पहलो बार ई विचार रखलो गेलो रहे। फेनु 2008 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून का आधिकारिक विश्व रूप से विश्व महासागर दिवस घोषित कर लक है। बहिन, 2026 के थीम छिके महासागर का जागृत कर सामूहिक कार्यवाही के साथ। बहिन, महासागर हमरा सनी लिए कहना जरूरी छे, ई जानना बहुत जरूरी छे। बहिन, हमस नी जे ऑक्सीजन ले छिए ओकरा 50% से ज़्यादा महासागर में रहे वाला छोटो छोटो पौधा यानी फ्लाइटोकंटन बनावे छे, यानी कि हर दूसरो सांस हमरा सनी के समुद्र से मिले छे। बहिन, बारिश, मानसून, आंधी, तूफान सब महासागर से जुड़लो छे। अगर समुद्र नहीं होते तो नहीं बादल बनते, नहीं खेती होते। कैंसर से लय करी कर दर्द के बहुत तरह के दवाई समुद्री जीवों से बने छे। समुद्र से बहन बहुत लोगों का रोजगार भी मिले छे, जना कि मछली पकड़ना, जहाज चलाना, पर्यटन, करोड़ों लोगों के नौकरी समुद्र से चले छे। बहन, यानी कि धरती के 70% हिस्सा घेरे वाला महासागर हमरा सनी के जान छिके। अपना देश तीन तरफ से समुद्र से घेरलो छे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी आरो हिंद महासागर। हमरा सनी के पास 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा छे। बहिन, महासागर हमरा सनी का आवाज देकर नहीं बुलावे छे, पर हेकरो लहर हर बार कहे छे हमरा बचाओ। यही लिली बहिन, आई विश्व महासागर दिवस पर हमसनी तीन शपथ ले छिए कि हमसनी प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करवे, समुद्र का कूड़ादान नहीं समझवे, आरो हमसनी आवे वाला पीढ़ी के लिए नीला, साफ आरो जिंदा महासागर छोड़वे। कहना कि बहिन, अगर समुद्र नहीं बचते तो धरती पर हमसनी भी नहीं बचवे। बहिन, बचे से याद अल कि आजकल बहुत तरह के बीमारी हो रहलो छे, जे कि जानलेवा होय छे। अगर सही समय पर इलाज नहीं होय छे तो आदमी मरा भी पारे छे। तो आए हम अपना सनी से एगो बहुत ही गंभीर लेकिन समझे योग्य विषय ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करवे, जे कि ई हमरा सनी के स्वास्थ्य और शरीर से जुड़लो एक महत्वपूर्ण विषय छिके। बहन, पहिने ई समझना जरूरी छे कि ब्रेन ट्यूमर की होय छे। हमरा सनी के शरीर बहुत सारा छोटो छोटो कोशिकाओं से मिलकर बनलो छे। सामान्य स्थिति में ई कोशिका एक नियम के अनुसार बढ़े आरो मरे छे, लेकिन जब कोई कारण से ई कोशिका अनियंत्रित होकर बहुते तेजी से बढ़ लागे छे तो उ एगो गांठ या गुच्छा बनाए ले छे। यही गांठ का बहन ट्यूमर कहे छे। आरो जब ई गांठ दिमाग में बने छे तो हेकरा ब्रेन ट्यूमर कहलो जाए छे। बहन, सभ्य ब्रेन ट्यूमर एक रंग नहीं होय छे। हेकरा मुख्य रूप से दू भागों में बांटलो गेलो छे, जना कि नॉन कैंसरस आरो कैंसरस। बहन, नॉन कैंसरस जेकरा बिनाइन कहलो जाए छे, ई कैंसर नहीं होय छे। ई बहुत धीरे धीरे बढ़े छे आरो दिमाग में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचावे छे, आरो इलाज के बाद पूरी तरह से मरीज ठीक हो जाए छे। कैंसरस हेकरा मैग्निनेंट कहलो जाए छे। ई कैंसर वाला ट्यूमर होय छे। ई बहुत खतरनाक होय छे, तेजी से बढ़े छे आरो आसपास स्वस्थ हिस्सा का भी नुकसान पहुँचाए छे। बहन, हेकरो मुख्य लक्षण छे ब्रेन ट्यूमर होला पर शरीर कुछ संकेत दे छे, जेकरा हमरा सनी का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हेकरा में शामिल छे सुबह के समय सिर में बहुत तेज दर्द हुआ लगे छे, अचानक से मिर्गी या दौरा पड़ा लगे छे, बिना कोई कारण के बार बार उल्टी या जी मचलाना,
आँखों से धुंधला दिखे लगे छे या कोई चीज दू दू गो दिखे छे। आरो बहिन शरीर के संतुलन बिगड़े लगे छे आरो कमजोरी महसूस हो छे। बहिन भले ही एगो डरावना बीमारी छिके लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने हेकरा में बहुते तरक्की करना छे आरो ई बीमारी के लक्षण शुरू में पहचानी लेलो जाए त MRI या CT स्कैन के मदद से हेकरो पता लगैलो जावा पारे छो। हेकरो इलाज मुख्य रूप से ऑपरेशन कीमोथेरेपी आरो रेडिएशन थेरेपी द्वारा करलो जावा पारे छो। बहिन अंत में हम अपना सनी से यह कहल चाहे छे कि स्वास्थ्य से बढ़ी का कुछ नहीं छे। यही लिली बहिन अखनी हम ई बीमारी के बारे में जे भी बतेलिए आरो कहलिए ई सब लक्षण लंबा समय तक अगर केकरो महसूस हुआ त तुरंत डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। बहिन जागरूकता और सही समय पर इलाज से हम असनी कोई भी बीमारी का हराबा पारवे। यही लिली बहिन अपना बाल बच्चा घर परिवार के हर सदस्य और साथों में अपना स्वास्थ्य के ध्यान जरूर रखवे ई आय हम असनी शपथ ले छे। तब बहिन कार्यक्रम में आरू आगू बातचीत करवे लेकिन ई अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90.
1: सभ्य बहिनके एक बार फेनूसँ स्वागत छै हुनको मनपसंद कार्यक्रममे। बहिन, सोमवार दिन छिकै आरो ई दिनके बाबा भोलेनाथके विशेष पूजा अर्चना होइ छै, तऽ आब हमहूँ सुनी एकटा शिव भजन सुनै छियै आरो भोले बाबाके स्तुति करै छी। कलाकार छिकै सुलेखा रमैया।

0: वाह बहन, बड़ी बढ़िया शिव भजन सुन लिए हमसनी। बहन, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण के अर्थ छै महिला का आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से इतना मजबूत बनाना छै कि वो अपना निर्णय खुद लिया पारा आरो समाज में बराबरी के भागीदारी निभावा पारा। तब बहन, यही से जुड़लो एगो पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जानकारी लेवे। वार्ता के विषय छिके महिला स्वावलंबन आरो सशक्तिकरण, और वार्ताकार छिके कुमारी शालिनी।
1: इतिहास गवाह है कि नारी ने हमेशा से परिवार संचालन का उत्तरदायित्व संभालते हुए समाज निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी को गुरु घोषित किया है, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ धन और भोजन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें नारी का सदा सम्मान करनी चाहिए, वह ही हमें इस धरती पर लाने वाली होती है। उनसे ही हमें समाज में रहना और चलना सिखाया है। लेकिन विडम्बना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। नारी की इस वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है क्या वह खुद या कोई और? इस वक्त महिलाओं के विकास और उसके सशक्तिकरण को अत्यधिक आवश्यकता है। दुनिया भर के सभी देशों में भी महिला उत्थान को एक महत्वपूर्ण विषय माना है। इसलिए विश्व भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को समर्पित एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है। इस सृजन की शक्ति विकसित कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार विमर्श, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का अर्थ है। महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में स्थान नहीं मिल सकता, जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है। महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी मृढ़ताओं, दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती, बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसले पर अधिकार पा सके। महिला अधिकार और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर नारी चेतना को जगाना और सामाजिक अत्याचारों में मुक्ति पाने का माहौल भी तैयार करती है। गांव में जाकर उनके अधिकार, जरूरत को सुनकर पूरा करने की कोशिश करती है। भारत में महिलाओं की स्थिति ने हर युग में कई बड़े बदलावों का सामना किया है, जिससे कृषि समाजों के विकास और राज्यों के साथ नारी की स्थिति में निर्णायक गिरावट आना भी एक है। समय समय

सतह पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में धनी और निर्धन दोनों वर्गों की स्त्रियों की अत्यधिक सार्वजनिक सक्रियता के प्रमाण भी मिलते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में आज महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है और महिला सशक्तिकरण एक बहुत चर्चित मुद्दा बन चुका है। घर के अंदर या बाहर सभी जगहों पर महिलाएं अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखती है और वे अपनी शिक्षा, व्यवसाय या जीवन शैली से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेने हुए अपने जीवन पर तेजी से अपना नियंत्रण कायम करने में कामयाब हो रही है। वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी से आसानी से काबू पा लेती है। देश की तरक्की के लिए पहले हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। एक बार जब महिला अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है और गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। समाज में जरूरत बनाने के लिए सबसे पहले समाज के उनके अधिकार और मूल्यों को भरने वाले उन सभी संकुचित सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, यौन हिंसा, अशिक्षा, भू हत्या, असमाजकता, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और जैसे ही पूरे विषय लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। भारत के संविधान में लिखे गए समानता का अधिकार का सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर घर परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। यह जरूरी है। महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर ही होती है। आज भी कई पिछले क्षेत्र में माता पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूर बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, हिंसा को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला दूसरे क्षेत्र में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। सरकार ने महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछले ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहां महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराना

होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है और साथ ही यह समावेशी भागीदार के रास्ते पर आगे चलने में सहायता करता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे परिवार एवं संगठन की खुशियों में वृद्धि होती है जहां महिलाओं का प्रभाव होता है। जब है नारी में इतनी शक्ति तो फिर क्यों नारी हो कहे बेचारी।

0: AIR at 90.
1: बहन ई अंतराल से पहने हम अपनी जी वार्ता सुन लिए, बहुत अच्छा जानकारी मिले हम रश्मि का ई वार्ता के माध्यम से। तो बहन अब अपना सी से बातचीत और गीत भजन सुने में समय के पता ही नहीं रहे छे और विदा ले के समय हो जाए छे। तो अगला दिन फेनू से हम अपना सी से कुछ नया बातों पर चर्चा करबे। तब तक हमरा विदा दिए, सब्बे का राधा का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी ग्रामीण श्रोता बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी पटना के प्रसारण में, जहां से आप क्रमशः हिंदी और उर्दू में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एनडीए के 9 जबकि महागठबंधन के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा है। भाजपा की ओर से भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना

नामांकन भरा। वहीं जदयू की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने नामांकन पर्चा भरा। एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इधर राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार के 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश में कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल माध्यमों से लोगों तक सीधे और पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंच रही है। इससे लक्षित वर्ग तक अधिकतम लाभ पहुंचना सुनिश्चित हुआ है, कार्य क्षमता बढ़ी है और शासन में भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देव मोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: मीडियम वेब 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की

0: ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।

उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतंत्र

0: 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी

0: आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल
4: मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट से। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस नगमे के साथ।

अभी आपने सुना दुश्मन फिल्म का नगमा, आनंद बख्शे ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह ने, आवाजें थी लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की।

अभी आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का नगमा पावेले चोपड़ा और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत लिखा था आनंद बख्श ने, संगीतबद्ध किया था सत्यन ललित ने।

0: AIR at 90.
1: चित्रपट से कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आइए सुनते हैं ये रकमा।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बक्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गान। बांग्ला गान कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 3:20 हो रहे हैं। निवेदित है समूह स्वर में देश गान।

अभी आप समोसर भी देश गान सुन रहे थे। मीटिंग वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:25 हुए हैं। अब आइए शामिल होते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहाँ है?
0: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहाँ जाओगी?
0: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
2: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
2: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही।
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
2: अपनी लालसा को, तृष्णा को

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर

0: अगर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय पीड़ा असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
1: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
0: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
1: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान हैं। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
0: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
1: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ही आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांधी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
0: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर हैं। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
0: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी,

0: तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
1: शुक्रिया मंजरी जी, लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
0: जी,
1: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नज़ारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन को हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए, सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है, बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले
0: हैं, आपने मुझे बोले ही नहीं दे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ,
1: तपाक से बोलना हुआ।
0: लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसे बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया।
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहां हमें बोलना नहीं चाहिए कहां बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से।
1: बिल्कुल।
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो।

0: तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुभते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने बात लेकर के
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काटकर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे ममता जी। लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है। अब नहीं तो कहकर सर मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप
1: हमें आज ही कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी।
0: तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो नहीं
0: बनाया नहीं जाता है।
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो मैं समझ गई थी।
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
1: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं।
0: इसकी
1: सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भरावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
0: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
1: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
0: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1/6 चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाए, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
1: जी।
0: और अब ये गाना सुनिए।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बताएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ, और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं, और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
0: ओहो,
1: इतना ज्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
0: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो, कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो

0: कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है। थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, एमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज़ हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: पेशेंट वो दूर टेंशन होती है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है। तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि

0: देखो, एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
0: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए, मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है। हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
0: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
0: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स हैं जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं। सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो-खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें, तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है। इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली हैं।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही, इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख

0: रहे हैं, जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन तीन भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, दो को नहीं हुआ है।
0: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
1: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
0: सही,
1: तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो।
1: जी
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के ओर हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: जी, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर।
1: जी
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है, जहाँ पे इमेज बनती है, उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है।
1: ओहो,
0: तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है, और आगे जाके तलियों में और हाथ के

0: जो पंजे है उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पूटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं, या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है, लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: हमें जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज़ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए और तली हुई चीज़ें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल

0: रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इज इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहत

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

0: खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है गालिबन उनके मकान की। हारे हुए परिंदे ज़रा उड़ के देख तो, आ जाएगी ज़मीं पे छत आसमान की। बुझ जाएं सरे आम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरी दास्तान की।
1: गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ मैं प्रशांत कुमार आर्य उपस्थित हूं आप सभी श्रोताओं के बीच कार्यक्रम युववाणी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी मेरी ही तरह कुशलता से होंगे। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं TNB कॉलेज में आयोजित आकाशवाणी 8@90 कार्यक्रम की विजेता हमारी को होस्ट बी खुशनुमा।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं बी खुशनुमा आकाशवाणी भागलपुर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
1: दोस्तों आज के कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आज आप जानेंगे विश्व महासागर दिवस के बारे में। तत्पश्चात आप सुनेंगे एक कहानी लौट आई बहारें, कहानीकार होंगी प्रिया कुमारी। इसके इतर आज आप सुनेंगे रोजगार समाचार एवं अंत में होगा समसामयिकी। एवं कार्यक्रम के दौरान आपके मनोरंजन का खास ध्यान रखते हुए आपको सुनाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी गाने। तो आइए कार्यक्रम का आगाज भी करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, जिसे आवाज़ दिया है सोनू निगम एवं कृष्णकाली साहा ने और फिल्म है परम सुंदरी।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: इस गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं चर्चा की ओर और जानते हैं विश्व महासागर दिवस के बारे में हमारी साथी बी खुशनुमा से।
2: दोस्तों, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और इसका मुख्य कारण यहाँ मौजूद विशाल महासागर है। हर साल 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें ये भी बताता है कि समंदर केवल पानी का भंडार नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पर जीवन की जीवन रेखा है। वर्ष 2026 के लिए विश्व महासागर दिवस का आधिकारिक विषय यानी थीम है पुनर्कल्पना। हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। ये थीम हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें महासागरों को खुद से अलग ना समझें। हमें अपनी पुरानी आदतों एवं अंधाधुन दोहन से ऊपर उठकर समुद्र के एक सक्रिय संरक्षक के रूप में सोचना शुरू करना होगा।
1: महासागर दिवस मनाने का पहला प्रस्ताव 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा सरकार द्वारा रखा गया था। शुरुआत में यह कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मनाया जाता रहा, लेकिन इसके बढ़ते महत्व को देखते हुए दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। इसके बाद जून 2009 को पहली बार आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस मनाया गया। मानव जीवन और प्रकृति के संतुलन में इनका योगदान अतुलनीय है। महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हम जो सांस लेते हैं उसकी 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन महासागरों में रहने वाले फाइटोप्लांकटन और समुद्री शैवाल द्वारा किया जाता है। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में एक थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। ये सूर्य की हानिकारक गर्मी एवं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर मौसम को संतुलित रखते हैं। दुनिया भर के करोड़ों लोग भोजन तथा रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों एवं मछलियों पर निर्भर हैं।
2: वर्ष 2026 वैश्विक समुद्री संरक्षण के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगभग 2 दशकों की लंबी बातचीत के बाद इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का नया BBNJ समझौता लागू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं और गहरे समुद्र की जैव विविधता की रक्षा करना, संरक्षित क्षेत्र बनाना तथा समुद्री प्रदूषण पर कानूनी लगाम लगाना है। साथियों, समुद्रों को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सब की भी है। हम छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें, समुद्री तटों एवं पर्यटन स्थलों पर कचरा ना फैलाएं, पानी की बचत करें तथा रसायनों का उपयोग कम करें ताकि वो नदियों के रास्ते समुद्र तक ना पहुँचे।
1: विश्व महासागर दिवस 2026 हमें ये याद दिलाने का एक शानदार जरिया है कि यदि महासागर सुरक्षित हैं तभी पृथ्वी पर हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमें इस वर्ष प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम समुद्री पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे नीले ग्रह को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। साथियों, चर्चा में आज इतना ही। अब आइए सुनते हैं कहानीकार प्रिया कुमारी से एक कहानी जिसका शीर्षक है लौट आई बहारें।
3: वंशीधर बाबू स्वयं अपने हाथों से ग्रामीणों को मिठाइयां बांट रहे थे। सभी लोग मिठाइयां खाकर उनकी पोती काजल को आशीर्वाद दे रहे थे। काजल ने प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर DSP का पद हासिल किया था। उस इलाके में किसी भी लड़की ने पुलिस विभाग का यह पद प्राप्त करने का गौरव हासिल नहीं किया था। वंशीधर बाबू उस इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति के जिला जज के पद से सेवानिवृत्त होकर घर में ही रहते थे। सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते थे। उन्हें 2 पुत्र थे, विवेक और अभिषेक। विवेक केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे, जबकि अभिषेक ने स्नातक तक परीक्षा ग्रहण कर गृहस्थी को संभालना ही उचित समझा। लगभग 80 बीघा जमीन के मालिक थे वंशीधर बाबू। संयुक्त परिवार की प्रथा को अपनाते हुए वे हमेशा गांव के लोगों को मिलजुल कर रहने की सलाह देते थे। मिठाइयां बांटते समय वंशीधर बाबू अतीत की यादों में खो गए। काजल वंशीधर बाबू के छोटे लड़के अभिषेक की एकलौती पुत्री थी, जबकि विवेक को दो पुत्र थे। सभी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। काजल ने पास के शहर के एक अच्छे कॉलेज में इंटर में नामांकन लिया था। कॉलेज में ही उसकी दोस्ती एक लड़के भैरव के साथ हुई। भैरव के साथ दोस्ती प्रेम में बदल गई, यह काजल को पता भी नहीं चला। काजल हमेशा भैरव के प्रेम में खोई रहती थी। यह बात काजल की एक सहेली निशा को पता चल गई। वह भैरव के बारे में अच्छी तरह जानती थी। महंगे मोटरसाइकिलों पर घूमने वाला वह लड़का काफी बदचलन था। गलत लड़कों के साथ उसकी दोस्ती थी। निशा ने काजल को काफी समझाया, लेकिन वह भैरव के प्रेम में इस प्रकार पागल हो गई थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। यह देख निशा भी काफी चिंतित रहने लगी थी। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करे। उसे लग रहा था कि यदि काजल भैरव के चंगुल में पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगी। काफी सोच विचार कर उसने सारी बातें काजल के दादा वंशीधर बाबू को बता दी। वंशीधर बाबू काफी दुखी हुए। उन्होंने काजल के पिता अभिषेक से इस संबंध में बातें की। अभिषेक तो गुस्से से पागल हो गया। दोनों ने काजल को बुलाया और इस संबंध में पूछताछ की। काजल ने बेबाकी से भैरव के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर लिया और उसी के साथ शादी करने की इच्छा जताई। वंशीधर बाबू ने उससे पूछा कि लड़का क्या करता है। काजल ने बताया कि वह बीए में पढ़ता है। सच्चाई यह थी कि भैरव कहीं भी नहीं पढ़ता था। उसकी पढ़ाई कब की छूट गई थी। उसने काजल को झूठ कहा था कि वह कॉलेज में पढ़ता है। वंशीधर बाबू और अभिषेक ने काजल को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुई। गुस्से से आग बबूला होकर अभिषेक ने काजल का कॉलेज जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे काजल और भैरव के बीच प्रेम की चर्चा और वंशीधर बाबू के घर के घटनाक्रम की बातें गांव में भी फैल गई। गांव में तरह तरह की चर्चाएं छिड़ने लगी। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो वंशीधर बाबू की तरक्की से चलते थे। ऐसे लोग हमेशा वंशीधर बाबू को नुकसान पहुंचाने के फिराक में रहते थे। इस घटना के बाद से ऐसे लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी। उधर अपने कमरे में बैठ काजल मन ही मन निशा को कोस रही थी। उदास मन से उसने कमरे में रखे टीवी को ऑन किया। वह ठीक खाना भी नहीं खाती थी, इसी वजह से वह काफी कमजोर हो गई थी। टीवी पर समाचार आ रहा था। इसी बीच समाचार वाचिका ने एक खास खबर पर काजल का ध्यान आकर्षित किया। टीवी पर एक लड़के को बार बार दिखाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार वह लड़कियों के खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का सदस्य था। काजल ने काफी ध्यान से उस लड़के को देखा और दादाजी कहकर जोर से चिल्ला उठी। काजल की चीख सुनकर सभी लोग काजल के कमरे की ओर दौड़े और उसके चीखने का कारण पूछने लगे। जवाब देने के बजाय काजल टीवी की ओर इशारा कर रही थी। इसी बीच काजल की सहेली निशा भी वहां पहुंच गई। निशा ने टीवी में दिखाए जा रहे लड़के को पहचान लिया। वह भैरव ही था जिससे काजल प्रेम करती थी। यह जानकर तो काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह सोचकर परेशान थी कि कितना अनर्थ होते होते बच गया। वह सोचने लगी कि यदि वह भैरव के चंगुल में पड़ जाती तो कितना अनर्थ हो जाता। घर वालों को निशा ने पूरी बात बताई। इसी बीच काजल अपने दादा वंशीधर बाबू के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वंशीधर बाबू ने उसे प्यार से उठाया और स्नेह पूर्वक माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह का भूला यदि शाम को याद आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अब तू सही रास्ते पर आ गई, इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। एक अनर्थ होने से बच गया, वरना अपने परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। इसी बीच भरे नेत्रों से अभिषेक ने अपनी पुत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी माता पिता और परिजन हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, हमारी बातों का कभी बुरा मत मानना। रोते हुए काजल ने भविष्य में कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करने की कसम खाई। माँ और चाची काजल को अपने कमरे में ले गई। वंशीधर बाबू ने मन ही मन अपने कुल देवता को नमन किया। इसके बाद से काजल ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। स्नातक की परीक्षा पास कर उसने पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया और उत्तीर्ण होकर डीएसपी का पद हासिल किया। इसी खुशी में आज वंशीधर बाबू के एक परिचित मानिक चंद जी ने प्रणाम किया। उनको देखकर वंशीधर बाबू अतीत से वर्तमान में आ गए। अपने हाथों से उन्होंने मानिक चंद को मिठाई खिलाई। घर में भी खुशियां और चहल पहल थी, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता छलक रही थी। वंशीधर बाबू के घर में बहारें लौट आई थी।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानीकार प्रिया कुमारी से एक कहानी, शीर्षक था लौट आई बहारें। अब आइए जान लेते हैं कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को।
2: साथियों,
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस छोटे से अंतराल के बाद अब आइए लेते हैं कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत का आनंद, जिसकी गायिका हैं सिमरन चौधरी और फिल्म है धुरंधर।

0: इस गीत के बाद आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण रोजगार समाचार।
1: साथियों, पहली वैकेंसी है आरआरबी की ओर से, कुल 11,127 रिक्तियां हैं असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए। योग्यता होनी चाहिए 10th प्लस ITI पास। उम्र सीमा है 18 से 30 वर्ष। फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट है 14 जून और आवेदन शुल्क है ₹500। अगली नई वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से CGL के लिए, कुल 12,256 सीट्स हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट है 22 जून एवं आवेदन शुल्क है मात्र ₹100।
0: अगली वैकेंसी आई है UPSC CDS के लिए, जिसमें कुल 451 सीट्स हैं अलग अलग विभाग के लिए। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है 9 जून और आवेदन शुल्क है मात्र ₹200। दोस्तों, रोजगार समाचार में आज इतना ही। अब आइए हमारी को होस्ट बी खुशनुमा से जानते हैं कुछ हालिया महत्वपूर्ण खबरें।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रघनंदा ने इतिहास रचते हुए नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वे नॉर्वे चेस जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। रुमेश त्रंघा पाथियरेग ने रो डायमंड लीग ने 92.62 मीटर भाला फेंककर 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले फोर्थ एशियन प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लायोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2026 से सम्मानित किया गया। वे यह प्रेस्टिजियस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले इंडिविजुअल फुटबॉलर बन गए।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को इंडियन एयरफोर्स का अगला वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, मैक्सिको और US में संयुक्त रूप से किया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर के इस सेगमेंट के बाद अब आइए लेते हैं युववाणी कार्यक्रम में इस प्यारे से ट्रैक का आनंद, जिसके गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल।

0: तो दोस्तों, इस ट्रैक के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी प्रशांत और हमारी साथी बी खुशनुमा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम हमारे युवा सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

संदेश से पहले आपने बाजी फिल्म का गीत सुना था, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था और संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है बाबुल फिल्म से, आवाज़ है कुणाल गांजावाला की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

0: AIR at 90.
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए जीत फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं समीर और मौसिकार हैं नदीम श्रवण।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म संगीता आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेख एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में डॉक्टर अजय राय को आप सुन पाएंगे। 8 बजे आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्री एलके पंडित को आप सुनेंगे। इनसे आप हम आपको बता दें 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कलाकार होंगे श्री एलके पंडित। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी का प्रसारण किया जाएगा। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियाँ कल के कार्यक्रमों की हम आपको दे दें। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता आप सुनेंगे। 5:55 पर चिंतन मनन सुन पाएंगे। 6:05 पर भक्ति संगीत सुनेंगे। इसे फिर से सुन लें। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर आरपी यादव की वार्ता आप सुनेंगे। लू लगना कारण लक्षण और बचाव। 6:40 पर रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7 बजे से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे ध्रुव कुमार से। स्मृति संवाद के अंतर्गत डॉक्टर केसी सिन्हा बातचीत करेंगे डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह से। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियाँ और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन।

कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे, सुबह 9:06 पर, 11:00, 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम बज़्म उर्दू आप सुन पाएंगे। प्रस्तुत करता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। इसमें आप सुनेंगे शादाब हसन से मकाला। उन्वान होगा उर्दू ज़ुबान के फ़रोग में बिहार का किरदार। कलाम शायर के तहत नौशाद को आप सुन पाएंगे। अफसाना सुनेंगे नगमा बेगम से धुंधली तस्वीर। साथ ही आप सुनेंगे कमर आलम का लिखा इंशाया हम और हमारे। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे जयनारायण शर्मा से। 12:00 नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुत करता होंगी श्री पार्वती के। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1:00 लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे राजेश कुमार पंडित से। 1:30 पर रमेश रमन का लिखा धारावाहिक आप सुनेंगे गंगा के सुरताल। आप इसकी तीसरी कड़ी सुनेंगे। निर्देशक दास मती चार्टर और अशोक शरण होंगे। 3:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में कविता पौड़वाल एवं जसवंत सिंह को आप सुनेंगे। 3:20 पर देशभक्ति गीतों का आनंद लेंगे। 3:25 से शाम 5:00 तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6:00 हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत के सब श्रोता का विदो के नमस्कार
1: और सभ्य श्रोता भाई बहन का राधा के भी नमस्कार। विदो भाई अपनों का नमस्कार।
0: नमस्कार राधा बहन, बताओ की हाल समाचार छे?
1: हाल समाचार तो ठीक छे विदो भाई, और तो अपना बताओ की हाल चाल।
0: हमरो तो सब चीज ठीक छो, याद देखी रहल छो गर्मी एकदम चरम पर छाई लो छे।
1: हाँ।
0: कभी कभी हल्का वर्षा होई छे।
1: हाँ।
0: हल्का छाव भी करे छे, लेकिन फिर भी अंदर से काफी गर्मी।
1: हाँ, उमस वाला गर्मी।
0: हाँ हाँ, ये वास्ता है मौसम में थोड़ा सावधानी रखे की जरूरत छे। अब बिना काम के धूप में नहीं निकलना चाहिए। धूप से निकले वक्त ही पानी पूरा पीवी लेना चाहिए, और घर से बाहर निकले वक्त ही संभव हुआ तो पानी के एक बोतल अपने पास जरूर रखना
1: चाहिए। साथ में वो छाता भी रखी लेना चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: जी।
0: आरु राधा बहिन, आय तो जाना छो कि आय 8 जून छके, प्रत्येक वर्ष 8 जून का विश्व महासागर दिवस मनेलो जाय छे।
1: जी।
0: महासागर के महत्व, ओकरा से संबंधित विषय, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन के ओर राजनीतिक आरु सामाजिक ध्यान आकर्षित करे वास्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व महासागर दिवस मनाए के घोषणा करलो गेलो।
1: जी।
0: अंतर्राष्ट्रीय दिवस आरु सप्ताह जनता के महत्वपूर्ण मुद्दा के बारे में शिक्षित करे वास्ते, वैश्विक समस्या के समाधान के वास्ते राजनीतिक इच्छा शक्ति आरु संसाधन के जुटाए वास्ते, आरु मानवता के उपलब्धि के जश्न मनाए के ओर ओकरा सुदृढ़ करे के अवसर छिके। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के पहल छिके, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने एकरा शक्तिशाली प्रचार के उपकरण के रूप में मनाए छे।
1: जी।
0: 2026 के वास्ते विश्व महासागर दिवस के आधिकारिक विषय छिके पुनर्कल्पना। हमसने जौन दुनिया का जानै छे ओकरा से परे महासागर के साथ हमरा सनी के गहरा संबंध छे।
1: जी।
0: अभी के समय में वैश्विक स्तर पर महासागर के रक्षा के वास्ते समुद्र

0: संरक्षित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करलो जाय रहल छे।
1: जी।
0: विश्व समुद्री दिवस के नाराज के हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। विश्व महासागर दिवस हमरा सबके दैनिक जीवन में महासागर के महत्वपूर्ण भूमिका का याद दिलाई छे। महासागर ग्रह के फेफड़ा छिके, भोजन आरु औषधि के प्रमुख स्रोत छिके। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के वास्ते महासागर विज्ञान दशक 2021-30 तक विभिन्न देश वैज्ञानिक आरु संगठन का एक साथ लाने छे ताकि महासागर विज्ञान में सुधार कर लो जाए सके आरु एक स्वस्थ अधिक टिकाऊ महासागर के समर्थन कर लो जाए सके। है दशक के एक प्रमुख कार्यक्रम ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होवला 2017-27 महासागर दशक सम्मेलन छके जहां वैश्विक नेता और विशेषज्ञ महासागर विज्ञान में होलो प्रगति के साझा करे में साझेदारी बनाए में और भविष्य में महासागर संबंधी कार्य का आकार दे वास्ते मिलते।
1: मना के विदो भाई छे कि हमरा सनी लिए महासागर या समुद्र बहुत जरूरी छे।
0: हाँ।
1: हर तरह जना कि रोजगार के लिए पर्यटन के लिए एकरा हमरा सनी के बचाना छे जेकि एकरा बचावे लिए भी हमरा सनी बहुत तरह के प्रयास करे पारे छी।
0: हाँ।
1: जना कि प्लास्टिक के कम से कम यूज करबे।
0: हाँ।
1: समुन्दर के हमरा सनी कूड़ा दान नहीं समझबे।
0: हाँ।
1: है ना, जेकरा से कि हमरा सनी के आबे वाला पीढ़ी लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित।
0: हाँ।
1: महासागर का। हाँ। बचाना छे।
0: कहने महासागर में बहुत सारा रत्न छिपलो
1: जी छे। रत्न छे और बहुत तरह के औषधि छे जना के भी बहुत।
0: हाँ।
1: कैंसर के बीमारी कितना बढ़ी रहलो छे तो।
0: हाँ।
1: बहुत तरह के जो दवाई सनी छे जो महासागर के ही अथी से जड़ी बूटी से बनेलो जाय रहलो छे।
0: यही वास्तव महासागर जे छे विज्ञान आरु वैज्ञानिक वास्ते भी एक बहुत बड़ो विषय छिके जेकरा पर गहरा रिसर्च करी के ओकरा दिन ब दिन आगू बढ़ाए रहल छे। अच्छा राधा बहन, आज तो विश्व महासागर दिवस छेकवे करके
1: जी।
0: एक रो अलावा।
1: हाँ, एगो आरो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस छिके विदो भाई।
0: हाँ।
1: आए हम अपने श्रोता भाई बहन का एक बहुत ही गंभीर लेकिन समझे योग्य विषय ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ आसान बात बतेबे।
0: हाँ, हाँ।
1: ई हमरा सनी के स्वास्थ्य और शरीर से जुड़लो एगो महत्वपूर्ण विषय छिके विदो भाई। पहले हमरा सनी के ई समझना छे कि ट्यूमर होय की छे।
0: हाँ,
1: हाँ। हमरा सनी के शरीर बहुते सारा छोटो छोटो कोशिकाओं से मिली के बनलो छे। सामान्य स्थिति में ये कोशिका एक नियम के अनुसार बढ़े या मरे छे लेकिन जब कोई कारण से ये कोशिका अनियंत्रित होय के बहुत तेजी से बढ़े लागे छे तो उ एक गांठ या गुच्छा बनाए ले छे।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: यही गांठ का ट्यूमर कहे छे।
0: अच्छा।
1: आरो जब उ गांठ हमरा सनी के दिमाग में बने छे तो ओकरा ब्रेन ट्यूमर कहलो जाए छे। विदो भाई, सभ्य ब्रेन ट्यूमर एक जैसनो नहीं होय छे। ई मुख्य रूप से दो भागों में बांटलो गेलो छे, नॉन कैंसरस आरो कैंसरस। नॉन कैंसरस जेकरा की बिनाई कहलो जाए छे ई कैंसर नहीं होय छे। ई बहुते धीरे धीरे बढ़े छे, दिमाग का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए छे और इलाज के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हुआ पारे छो।
0: अच्छा।
1: आ दूसरा छे कैंसरस, एकरा मैलिग्नेट कहे। ई कैंसर वाला ट्यूमर होय छे आरो ई बहुत खतरनाक होय छे, तेजी से बढ़े छे और आसपास के स्वस्थ हिस्सा का भी नुकसान पहुंचाए छे। विधवा, एकरो ब्रेन ट्यूमर पहचाने के मुख्य लक्षण छे जना कि ब्रेन ट्यूमर होला पर शरीर कुछ संकेत दे छे जेकरा की नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जना कि भोर के समय माथा में बहुते तेज दर्द हुआ लगे छे, अचानक से मिर्गी या दौरा पड़े लगे छे, बिना कोई कारण के बार बार उल्टी हुआ लगे छे या जी मचलावे छे, आँखों से धुंधला दिखा लगे छे, शरीर के संतुलन बिगड़ी जाए छे और कमजोरी महसूस हुई छे। ई भले एगो डरावना बीमारी छिके विदो भाई लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने एमे बहुते तरक्की करना छे आरो अगर सही समय पर एकरो लक्षण पता चली जाए तो MRI या CT स्कैन के मदद से एकरो पता लगावा पारे छो। एकरो इलाज मुख्य रूप से ऑपरेशन, कीमोथेरेपी आरो रेडिएशन थेरेपी द्वारा करलो जावा पारे छो। अंत में विदो भाई यही कहबे कि जागरूकता और सही समय पर इलाज से हम सब कोई भी बीमारी का हराबा पारे छो।
0: हाँ, यानी सही समय पर जागरूक हो जाना।

0: है बहुत बड़ो बात कहलो तो राधा बहिन,
1: जी
0: केना जब समय बीती जाए छे तब जागरूक होलास भी कोई फायदा
1: कोई
0: नहीं
1: फायदा
0: होई छे।
1: नहीं छे।
0: यही वास्ते समय रहता चेती जाना चाहिए हो, आ ओकरो जो सही दिशा में सही जगह पहुंची इलाज कर लो जेते तो
1: जी
0: इलाज संभव छे।
1: हाँ
0: तो चलो अब कार्यक्रम में आगू बढ़े छे, आ श्रोता लोग के एक देशभक्ति गीत सुनवाई छे।
1: ठीक।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

गुज गुज कौन कोना ओ कन्ना गुज गुज कन्ना गुज गुज कौन कोना पवन बहे पुरबैया धरती पवन बहे पुरबैया धरती उगले सोना ओ कन्ना गुज गुज कन्ना गुज गुज कौन कोना ओ कन्ना गुज गुज कन्ना गुज गुज कौन

0: हाँ राधा बहन, तो हमरा सनी के देश ते खेती प्रधान देश छके,
1: तो
0: ये में कुछ मौसम संबंधी सूचना भी होना चाहिए
1: हाँ,
0: और कृषक वास्ते कुछ समसामयिक सलाह ही होना चाहिए ताकि अपनो सुविधा अनुसार खेती करल पारे छे।
1: हाँ, तो कुछ सूचना दे दो मौसम के भी।
0: हाँ, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के आगामी समय के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के और हल्का वर्षा होय के अनुमान छे। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहे के संभावना छे। अगला दो दिन तक 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चले के अनुमान छे। कुछ मौसम संबंधी चेतावनी भी दिलो छे कि जिला के एक या दो स्थान पर हल्का वर्षा गरज के साथ बिजली चमके के आरु 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना छे।
1: अच्छा,
0: आंधी तेज हवा और वर्षा फसल का नुकसान, फल फूल झड़ना, कीट रोग प्रकोप और सब्जी और बागवानी फसल का क्षति पहुँचाएल पड़े छे और पशु पर भी तनाव बढ़ाएल पड़े छे। आगामी दिन में वर्षा के संभावना का देखता हुआ खेत में कटलो हुआ फसल का सुरक्षित स्थान पर ढकी के रखना चाहिए। खड़ा फसल में सिंचाई अभी रोकी देना चाहिए और खाद कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करना चाहिए। खड़ी फसल में सिंचाई स्थगित करी कर खाद कीटनाशक के छिड़काव जना कि बतैल हम राधा बहन कि जब आसमान साफ रह तभी कर लो चाहिए। जो आसमान साफ नहीं रहते आप मान लो तो खाद दे दो कीटनाशक दे दो तो पानी से तो बही जेता। ठीक है, अब जे कृषक भाई ने धान के खेती करे छे ओकरा वास्ते भी कुछ सलाह छे कि लंबी अवधि वाला धान के किस्म जैसे सबूर श्री स्वर्णा सब एक राजश्री राजेंद्र मंसूरी राजेंद्र श्वेता स्वर्णा VPT 5204 आरु राजेंद्र कस्तूरी के नर्सरी स्थापित करना चाहिए। स्वस्थ पौधा के वास्ते नर्सरी में सड़लो हुआ गोबर के खाद के व्यवहार करना चाहिए। नर्सरी में क्यारी के चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर आरु लंबाई सुविधा अनुसार रखना चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नर्सरी तैयार करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करना चाहिए। बीज गिरेला के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लेना चाहिए। मक्का के जे खेती करे छे ओकरा वास्ते सलाह छे कि खरीफ मक्का के बुआई करना चाहिए। खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़लो खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करना चाहिए। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलो स्फुर आरु 50 किलो पोटास के व्यवहार करना चाहिए। अनुशंसित मक्का के किस्म जैसे सुवान देवकी शक्तिमान एक शक्तिमान दो राजेंद्र शंकर मक्का तीन गंगा 11 के आरु प्याज के कृषि वास्ते सलाह लगलो छे कि खरी प्याज के खेती के वास्ते नर्सरी तैयार करना चाहिए। स्वस्थ पौध के वास्ते नर्सरी में गोबर के खाद अवश्य डालना चाहिए। खरी प्याज के वास्ते N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर किस्म अनुशंसित छे। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करना चाहिए। बीज गिरेलाक पहिने बीजोपचार कर लेना चाहिए। बीज के दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। लीची तोड़े के बाद खास करी बरसात शुरू होला से पहिने बगीचा के जुताई करना चाहिए और खाद उर्वरक के प्रयोग करना चाहिए। प्रति पौड़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़लो गोबर के खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 किलोग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिलाकर देना चाहिए। आरु आब समय हो गेलो छे प्रायोजित कार्यक्रम के, तो आब श्रोता लोग के एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाई छी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए नंबर, नंबर है 9431899002।

0: पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
1: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
0: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800120051, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी, समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
0: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800120051। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब 3 तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
0: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं, रोजगार वाले रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
0: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाएगी,
1: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
0: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
1: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें, हाँ, हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफ़ा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियो वेस्कुलर टेक्नोलॉजी बीएससी इन कार्डियो वेस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। चलने से पहले हम नंबर बता दें 9431899002 9431899002। तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हाँ अभी हम सुनी चलिए हम अपनी प्रायोजित कार्यक्रम और जे छे अब कुछ खेतीबाड़ी पर भी चर्चा होना चाहिए। तो बरसात के समय में भिंडी की खेती केना करना चाहिए एकरो बारे में विस्तार से जानै छे डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से।
4: बरसाती भिंडी की खेती, भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसका उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यह गर्मा एवं बरसाती मौसम की सब्जियों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। भोजन में प्रयोग करने पर इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन एवं खनिज प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके जड़ एवं तना प्रयोग करने से गुड़ की सफाई तथा चीनी की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके तने के रेशे छिलके का प्रयोग पेपर मिल में करते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे वर्ष की जा सकती है, परंतु हमारे राज्य में इसकी व्यवसायिक खेती उन्नत ढंग से किसान कर रहे हैं, बस जिसमें बरसाती भिंडी की खेती प्रमुख स्थान है। जलवायु एवं मिट्टी, भिंडी लंबे एवं गर्म मौसम वाली फसल है। इसकी फसल के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम सबसे अच्छा रहता है। भिंडी की अच्छी उपज प्राप्ति के लिए गर्म, लंबा एवं नमीयुक्त मौसम होना चाहिए। ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन भूमि भुरभुरी एवं होनी चाहिए तथा जिसका पीएच 6 से 6.8 हो, लेकिन ये अम्लीय भूमि में भी अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। भिंडी की उन्नत किस्में पूसा मखमली, पूसा सावनी दोनों किस्में बरसात एवं गर्मा मौसम में उगाई जाती हैं, जिनके फल 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे, हरे, कोमल एवं रोमा रहित होते हैं तथा इससे 100 से लेकर 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। बरसाती फसल हेतु परवनी क्रांति सिलेक्शन 8-10 KS312 आदि प्रमुख हैं, जो लगभग 90 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब 7, वर्षा उपहार अंकुर 41, पंत भिंडी 1, BRO 5, BRO 6, BRO 22, काशी लालिमा सिलेक्शन 101 भिंडी की प्रमुख किस्में हैं। भिंडी की कुछ हाइब्रिड या संकर प्रजातियां जैसे सोनाक्षी, भवानी, कृष्णा हाइब्रिड 6, हाइब्रिड 8, इंद्रानील एवं अनोखी इत्यादि हैं, जिनकी खेती आसानी से की जाती है एवं 45 से 50 दिनों बाद भिंडी की तुड़ाई शुरू हो जाती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके, जिसमें खरपतवार अच्छी तरीके से सूख जाते हैं या दब जाते हैं, दूसरी एवं तीसरी जुताई कल्टीवेटर से करें तथा साथ में 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला दें। अंतिम जुताई के समय नेत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत में मिला दें और जुताई करने के बाद पाटा चलाकर भूमि को भुरभुरा एवं समतल कर लेना चाहिए। नेत्रजन की शेष आधी मात्रा 25 से 30 दिन एवं 50 से 55 दिनों बाद दो बार पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। बीज एवं बुआई, बरसाती भिंडी की बुआई हेतु 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है तथा बोने के पहले बीज का उपचार 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से थिरम या कैप्टायन या बेबेस्टिन नामक रसायन से अवश्य प्रयोग करना चाहिए, जिससे फफूंदी जनित बीमारी का प्रकोप कम लगता है। बुआई का समय खरीफ मौसम में बरसाती भिंडी की बुआई का समय जून से जुलाई माह अच्छा माना जाता है। बुआई की विधि, भिंडी के बीजों की बुआई सीधे खेत में की जाती है। यदि खेत में नमी की मात्रा कम हो तो बोने से पहले 24 घंटे पानी में बीज को भिगोकर तथा अंकुरण कराकर करनी चाहिए। खेत के में बीजों की बुआई 50x30 सेंटीमीटर की दर से, जैसे जिसमें कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर पर करना चाहिए। एक स्थान पर एक या दो बीजों की बुआई करनी चाहिए। बीज की बुआई से पूर्व खेत में मेड़ एवं नाली सिंचाई के लिए अवश्य बना लें तथा बीज की बुआई की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर पर करें। खाद एवं उर्वरक प्रबंध। भिंडी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित एवं उचित उर्वरक की मात्रा का प्रयोग मिट्टी जांच के आधार पर करना चाहिए। इसकी खेती में 150 किलोग्राम या 150 से 200 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद या 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर केचुआ खाद या 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया 250 से 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फास्फेट तथा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। निकाई गुड़ाई या खरपतवार प्रबंध। बरसाती भिंडी की फसल में 1 से 2 निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, जिसमें प्रथम निकाई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरी 45 दिन के बाद करनी चाहिए, जिससे खेत में उगने वाले खरपतवारों को आसानी से रोका जा सकता है तथा फसल की बढ़वार अच्छी होती है। सभी पौधों को एक समान रूप से पोषक तत्व जल हवा एवं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बनी रहती है। यदि खेत में खरपतवारों की समस्या अधिक हो तो इसके लिए रासायनिक विधि से खरपतवार रोकथाम के लिए एलाक्लोर या लास

0: करना चाहिए। सिंचाई प्रबंध, भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है, अतः बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए तथा सिंचाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अधिक वर्षा होने पर जल निकास का प्रबंध अवश्य करें। कीट व्याधि प्रबंध, भिंडी में फल एवं तना भेदक कीट का प्रकोप के लिए इंडेक्साकार्ब तरल दवा 2 मिलीमीटर या डाईमेथोएट 30 cc तरल दवा का 1.5 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे प्रकोप कम होगा। भिंडी का लाल बग कीट के बचाव हेतु डाईमेथोएट 30 cc दवा का 1.5 मिलीमीटर प्रति लीटर जल में घोलकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। लाल मकड़ी या माइट की रोकथाम के लिए गंधक की बारीक धूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव करें, या डाइकोफाल 18.5 cc का 3 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में फसल पर घोल करके फसल पर छिड़काव करें। जैसे कीट की रोकथाम के लिए इमीडा क्लोरपीट 17.8 SL का 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या नीम बीज चूड़ 4% का 3 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर पर 5 बार छिड़काव फसल पर करना चाहिए। पीत सिराज मोजेक रोग या रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, इसकी रोकथाम के लिए नुमाकरान 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें एवं रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें। पत्ता धब्बा रोग के बचाव हेतु बीज उपचार करके फसल को बोना चाहिए, जिसमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना लाभदायक रहता है। फसल चक्र तथा अंतर्वर्ती खेती, सामान्यतः 1 वर्षीय फसल चक्र में शकरकंद, भिंडी या भिंडी, पातगोभी, लौकी को उगाया जाता है। इसी तरह 2 वर्षीय फसल चक्र में टमाटर, साग, भिंडी, फूलगोभी, लौकी को उगाया जाता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में भिंडी के साथ आलू, मटर, बैंगन, मकई, फूलगोभी, साग इत्यादि को आसानी से उगाया जाता है। तुड़ाई एवं उपज, सामान्यतः भिंडी की फसल की तुड़ाई लगभग बुआई के 50 दिनों के बाद शुरू हो जाती है। इसकी प्रत्येक तुड़ाई तीसरे या से 5वें दिन भिंडी की तुड़ाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार उत्तम वैज्ञानिक ढंग से बरसाती भिंडी की खेती करके कृषक 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भिंडी की उपज प्राप्त कर सकते हैं।
1: आज के कार्यक्रम से यहीं विदा लै छे। अगला दिन फिर मिलवे। सबका विदो के नमस्कार
2: और सभ्य का राधा के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजे हैं, रांची से सुनिए प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्म।

0: लोग उसके साथ रहेंगे, इसलिए इसमें कोई उचित अनुचित के बारे में सोचने की बात नहीं है। पहले ही स्पष्ट कर दिया था हमने, जैसा भी करें भाजपा के लोगों ने जो तय किया है हम लोग उसके साथ रहेंगे, हम लोग बहुत होगा तो उनको अपना वोट दे देंगे।
1: नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
2: सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं किया, हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नाथवानी जी पहले भी यहाँ से दो दो बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं, तो हम लोगों ने तय किया भाई एक ट्रस्टेड व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर।
1: नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित हुई, विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग लिया। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बैनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हुए। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। इस परियोजना के तहत आज देवघर के सूचना भवन में जिले के थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर उनकी राय ली जा रही है, जिससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाती है।
3: हजारीबाग सहित देश के सभी जिलों में स्वच्छता का रैंकिंग चल रहा है कि जो शहर जितना अच्छा होगा फीडबैक के आधार पर जनता जो वोट करेगी उसे उनकी रैंकिंग होगी और फिर जैसे देश में उनका

0: शिक्षण में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के विशेषज्ञ डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल साक्ष्य, सोशल मीडिया अपराध, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों की जांच की जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की साइबर अपराध जांच क्षमता को मजबूत बनाना है। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर लौटी रांची की नीतू कुमारी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामेगाहारा में आयोजित प्रतियोगिता में अंपायरिंग करने वाली झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर बनी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं, खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, एनडीए ने परिमल नाथवानी को दिया समर्थन, इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद्य वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर, आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिस कर्मी, रांची में प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:12 हुए हैं। कार्यक्रम सुनिए

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकास खंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
2: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया और

0: ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था। कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जनप्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोकर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्व समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी
1: काफी
0: बड़े स्तर पर काम किया,
1: बहुत
0: लोगों का
1: फोकस किए,
0: सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर आपकी
1: बढ़
0: मदद की।
1: चढ़ कर मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग को आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से,
0: जी
1: अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 सालों में जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं, इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि तो वाटर वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, कहा कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी आया कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी अपने कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और सर,

0: जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है। इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं हैं,
0: जी
1: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहां पर लगा दिए हैं। वहां हम लोग का मतलब कि गाँव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहां पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहां से सामने आ रहे हैं।
1: सामने आ रहे हैं। और सप्ताह में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी को भी
0: जी
1: तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए?
1: विगत आने वाला समय में और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ, इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
0: जी,
1: और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन का काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घरे में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है।
0: यानी कि लगातार व्यस्त रहते हैं?
1: मतलब कि हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
0: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को वहाँ आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहाँ हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं ना, आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए।

0: और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज का आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं।
0: जी,
1: चाहे जिसे कहा महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं, तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को, आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है। प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में पटना से प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन के 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे, देश भर से मिली शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का सपना साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी योजना को स्वीकृति दी गई। ये योजना आगामी 1 जुलाई से राज्य में लागू होगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः लागू करने की मंजूरी दी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत बिहार शरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम स्वीकृति भी दी गई। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।
3: नामांकन के अंतिम दिन आज प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विधानसभा परिसर में दिन भर नेताओं और समर्थकों की आवाजाही बनी रही।

0: सत्तारूढ़ एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट के उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्म अभिनेता से नेता बने पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने भी पर्चा भरा, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश ने नामांकन दाखिल नहीं किया। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री जय कुमार चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: लोक जनशक्ति पार्टी आर के उम्मीदवार अशरफ अंसारी ने नामांकन भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि वे पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
2: ये हमारे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास, उसका ये नतीजा है हम जैसे मामूली कार्यकर्ता के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी उन सभी लोगों के प्रयास और विश्वास पर खरे उतर सके।
1: पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि संगठन के हर सदस्य को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।
3: ये बड़ा दिन है, पार्टी ने अपने पुराने ईमानदार कार्यकर्ता को मौका देने का काम किया जो कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को मजबूती देने का काम करती
1: है। इधर जदयू उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने ऊपर भरोसा जताने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया।
4: पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी विश्वास पार्टी ने किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी दायित्व मुझे मिली है जिसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊंगा। और मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना देखा उसे पूरा करूंगा।
1: पार्टी उम्मीदवार भारती मेहता ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलते हुए नारी सशक्तिकरण के प्रयास को और सुदृढ़ करेंगी।
5: आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत को धरातल पर उतारना, जिस तरह उन्होंने बेटियों को सशक्त किया है, वो किसी भी स्थिति में बिहार में आगे बढ़ता जाए, वो धारा चलती रहे, वो धारा आगे बढ़ती रहेगी। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवारों पे विश्वास किया है और सबको शुभकामना है।
1: इधर राजद से विधान परिषद सीट के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि पार्टी की संख्या बल भले कम हो, हम पार्टी के झंडे को नहीं झुकने देंगे।
6: इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो हमारे नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया है। राष्ट्रीय जनता दल का जो मेरा झंडा है, चाहे मेरी संख्या कितना भी हो इस सदन में, झुकने नहीं देंगे। और जिस कारण मुझे पुनः सदन में भेजा है, 100% मैं खरा उतरूंगा।
1: शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उन अटकलों को खारिज किया है जिसमें उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करने की बात कही गई थी।
1: नाराजगी का क्या सवाल, बाकी उसके लिए क्या है, फिर नहीं मिली मिलेगी। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है बने रहेगा। सदन की सदस्यता जब आवश्यकता होगी वो हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है।

0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना है। आकाशवाणी अपने आप में ये जन जन की आवाज और आगाज है। आकाशवाणी की जो प्रामाणिकता थी न्यूज के संदर्भ में, यानी कि हर लोगों की जुबा पे आकाशवाणी की ही आवाज की इंतजार रहती थी। 90 वर्ष विश्वास का वर्ष, एक अपने आगाज और आवाज का वर्ष। इस 90 वर्ष के लिए आकाशवाणी को इस यात्रा तय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है और गरीब कल्याण योजना पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन गई। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
4: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहार क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देवमोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक चार पहिया वाहन और 1.25 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से 228 लीटर बियर बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन से एक उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरी। देश भर से मिली शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
7: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
7: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
6: आप कौन?
8: आरबीआई कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है, इसे प्रस्तुत कर रही हैं अंशु अवस्थी। पूर्वी चंपारण जिले में तीसरे चरण के सहयोग शिविर का आयोजन आगामी 16 जून को किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पदाधिकारियों को प्रखंड एवं पंचायत आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1100 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकता है। डीएम ने कहा कि परिवाद दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन कर दिया जाएगा। इससे पूर्व जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। एक विकास के उपनिदेशक द्वारा बीते दिनों एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अंतर्गत भुगतान की स्थिति, गन्ना सर्वे, गन्ना यंत्रीकरण, क्षेत्र विस्तार योजना तथा एक मूल्य भुगतान की गहन समीक्षा की गई। बैठक में परिक्षेत्र की चीनी मिलों HPCL सुगौली, HPCL लौरिया, मंझौलिया चीनी मिल, न्यू स्वदेशी चीनी मिल नरकटियागंज, हरिनगर चीनी मिल और भारत चीनी मिल सिंगवलिया के महाप्रबंधक एवं संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मेगा कृषि ऋण जन संपर्क शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले भर से जीविका समूह की सदस्याओं एवं किसानों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा 2026 जीविका समूह की सदस्याओं के बीच 51 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इधर 10 जून को होने वाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अधिनायक लिपिक परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7896 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के स्वच्छ एवं निष्पक्ष संचालन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अब प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
11: पश्चिम चंपारण जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जिले के 3 प्रखंडों में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बेतिया सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर ही त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्धन किसान, मजदूर, महिलाओं एवं जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: इधर केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीते दिनों बगहा पुलिस जिला के रामनगर स्थित खटौरी गांव में एक निजी हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक यूनिट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत स्थापित की गई है, जिसका संचालन क्षेत्र के युवा उद्यमी रवि शंकर नाथ तिवारी द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यह परियोजना न केवल व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक पशुपालन एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगी। जिले में मखाना की खेती एवं मखाना व्यवसाय को लेकर किसानों के बीच उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनो के संदेश से प्रेरित होकर बैरिया निवासी युवा किसान रंजीत कुमार चौधरी ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी छोड़कर मखाना उत्पादन एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी अहम पहचान बनाई है। रंजीत कुमार चौधरी ने दरभंगा से मखाना व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत में वे दरभंगा से कच्चा मखाना लाकर बैरिया में उसका प्रोसेसिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और आज उनके द्वारा तैयार मखाना देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों तक भी भेजा जा रहा है। बगहा SSB 65वीं बटालियन के ग्राउंड में 227 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड का आयोजित किया गया। वहीं नरकटियागंज स्थित SSB की 44वीं बटालियन के ग्राउंड में 152 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। बगहा के परेड में IG ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू शामिल हुई, जबकि नरकटियागंज में IPS महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल निशांत कुमार उज्ज्वल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षुओं से अपने दायित्वों का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। बीते दिनों पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार सांसद चले गांव की ओर कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र में निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पुल और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं उठाई। जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए सांसद ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले की हलचल।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:52 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज आप सुनेंगे डॉक्टर अजय राय को। इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 870-001-4242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

तकनीकी ख़राबी के कारण हम आपको यह गीत नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। 8 बजने को हैं आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष कार्यक्रम सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गणपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनालिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीज

0: जी आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युववाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युववाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युववाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी, अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोलें, सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ टीआरपी की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
0: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी टीआरपी की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
0: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड।
3: अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
0: अच्छा।
3: उसके चलते वो गुवाहा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करें।
0: जी।
3: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहां तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
0: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधे लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल से चाहे वो टीवी के चैनल से उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर किए हो।
4: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
4: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे।
0: जी।
4: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
1: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कॉमेंट्रीज, और हॉकी की कॉमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था।

0: में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों को,
1: पंत जी हो, सबने, महादेव वर्मा हो,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे,
1: हाँ।
0: ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले। हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सवैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेट्रो रिकॉर्डर हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बनके सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो

0: अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है। आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे। आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है, पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है, हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारी बारियों को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
0: धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
5: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
5: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
4: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
6: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
6: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
4: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे हैं। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय है। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
0: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
0: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
1: बिल्कुल,
0: और जितने लोग भी कार से सफर
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
0: तो
1: रेडियो,
0: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी, कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
7: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी, और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है, आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
8: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए, क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स हैं उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पर अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने की, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
9: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
10: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
11: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
12: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
13: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
11: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
14: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
11: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे newzonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
8: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराए से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्त गिर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंभा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
3: हमारी साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीराजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीराला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की फौरी मदद का ऐलान किया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था जिसकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोकगीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल निफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो जंगलात और माहौलियाती निजाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
6: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वाजह किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़राअत से मुतालिक अशिया

0: श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481-2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पर उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएँ, कौन सी किस्म लगाएँ जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ में लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
0: जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
0: जी।
2: प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सर जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त

0: बोल रहा हूँ, ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उससे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
2: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
2: हो जाती
3: और
2: है।
3: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
2: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश
2: जी,
4: राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90वीं स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
2: डॉक्टर मीना,
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा तो
2: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी
3: है,
2: किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं योगेश झांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
2: नमस्ते
5: जी, हम योगेश जांगड़े बोल

0: मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी
0: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से, जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
2: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
3: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
2: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूँगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार जी।
4: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
5: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले 2 मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है, इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह

0: जैसे मिट्टी लेना है, और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी वे सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला है ये बिल्कुल सही नहीं है। चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए, और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके, और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
0: देखो, सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का
1: जी।
0: जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है, और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है। यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर साहब मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फसल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना आदि का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा, और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गाँव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियाँ भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सुडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है,

0: तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है। तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके
1: ले
0: जाता
1: जाता
0: है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी।
2: जी।
1: हेलो,
2: नमस्ते
1: नमस्कार
2: जी। मेरा प्रश्न है,
1: जी।
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यकता है, आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समेट एक गेहूँ में बीमारी वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है। और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा। तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगी, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है या अजोला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या MP में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का STD कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक जो अभी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ। खासकर अगर मिसाल का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी, आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है, उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
5: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी।
5: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
5: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
5: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है? और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना?
1: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
4: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री एल के पंडित से ख्याल गायन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए अली अकबर खां से राग मध्यमात सारंग।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए श्री एलके पंडित से ख्याल गायन राग छायानट में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्री एल के पंडित से ख्याल गायन राग छायानट में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पहली पसंद आई है फिल्म हसीना मान जाएगी से। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुनना चाहते हैं आप संगीत प्रेमी। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गनौरी और प्रकाश वीर राजपूत। डोंडी लोहारा ब्लॉथ से कमलेश जयपुरिया। टॉन्से भिलाई से अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार।

राम, आप हैं गंगा विहार रानी तालाब से, नंदकिशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम, मनोज, अमित, बबली, स्वीटी, श्रुचि, रौली, पायल, अनवी, आशी और ईशु बाबू। शमशाद खान, वली खान, अली खान, मिस्टर खान, रुस्तम खान, आज़म खान, अरबाज खान, गयास खान और अल्तमश खान, आप हैं कव्वाली मैदान शकरुल्ला चक से और आप हैं अकबर नगर से अशोक कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, ऋषि कुमार गुप्ता, सोमू कुमार गुप्ता और अंशु कुमार गुप्ता।

नीलकोटी मोहल्ला साहेबगंज भागलपुर से छोटू सृष्टि मोहित राज सोनम और डॉक्टर सुभट्ट कुमार मंडल बड़े खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ भागलपुर से आप हैं। भाई गुलफराज आलम बेगम शमारा दोस्त जमालुद्दीन नेपाली साथ में हैं। सिटीजन मास्टर शादाब और धुरैया गंगदौरी से राम विलास रविकांत नीरज अमर मारुति सावित्री देवी कावित्री तनुजा और सांदेव हरि। मुंदीचक भागलपुर से विशाल कुमार ऋतिक रोशन डोलू बैजानी चौबे टोला से वर्षा वंदना कन्हैया मेघा शालू निहाल साक्षी कुकू चिकू पवन कल्लू मल्लू सोनी मीतू मीतू ईशु अनु और आर्या। कहलगांव से आप हैं सुजीत कुमार राय। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से गोपाल प्रसाद शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली फिल्म का नगमा। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

पुराना तालाब डुमरों से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी, शाहाना परवीन, हिना परवीन और उमा परवीन अंसारी। जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, जानवी राज, असलम अंसारी और बेबी अंसारी। शरफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, साथ में फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। मुजाहिदपुर पुरापुरला से आप हैं मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर, इल्मा नाज और इम्किनाज। आज़ाद कॉलोनी सहारनपुर से नौशाद आलम, शहजाद आलम, राशिद आलम, साजिद और वाजिद। लखीसराय जमुई रोड मंझवे से दिलावर हुसैन, रुस्तम हुसैन, वाजिद खान, जोया खान, शायरा और हुज़ैफ़ा खान। आप सब सुनना चाहते हैं राजकुमार फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को।

मुजाहिदपुर पुरपटोला से आप हैं राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम, जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम और राज खान। मोहल्ला काजीपुरा कहलगांव से सुहाना, यश, अरमान, खुशी, सिमरन, मुस्कान और बेबी मायरा। गोराडीह से डॉक्टर हेमंत कुमार, जिवेश नंदन, नीलेश नंदन। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। आप सब सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम फिल्म में लता मंगेशकर और मुकेश को।

आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय

0: प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुरप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बजकर 10 मिनट हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। सुबह 5:48 पर हम फिर उपस्थित होंगे। अभी हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शिवरात्रि, जय हिंद।